एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: इसी शिव भजन के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी खंडवा है, सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चिंतन जल संरक्षण, आलेख कैलाश चंद्र पालीवाल का, वाचन रवि सोनी का।
1: कौवे की समझदारी की कहानी हम सब जानते हैं कि कैसे घड़े में कंकड़ डालकर वो पानी ऊपर लाया और अपनी प्यास बुझाकर उड़ गया। कौवे जैसी समझदारी का बार बार इस्तेमाल करके हम खाली कर चुके हैं धरती के भीतर छुपा पानी का अपना घड़ा। कुएं, हैंडपंप, मोटर पंप के जरिए उलीच चुके हैं हम सारा पानी। हम कौवे की तरह उड़कर दूसरी जगह पर भी नहीं जा सकते, इसलिए धरती के नीचे छिपे अपने घड़े को हमें भरना होगा बरसात के पानी से। घर में, गांव में, खेत में, सब जगह घड़ा तो हमें भरना ही होगा अपने लिए। ब्रह्मांड के किसी ग्रह पर जीवन तलाश करने के लिए हमारे वैज्ञानिक

0: सबसे पहले ढूंढते हैं चट्टान में जमी बर्फ या मिट्टी में नमी। इसलिए जहाँ पानी होगा वहीं जीवन होगा, जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ न वनस्पति होगी न ही जीवन की कोई संभावना। हम हैं क्योंकि हमारी धरती पर पानी है। जब पानी नहीं रहेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। लेकिन इतनी दूर की बात कौन सोचता है। शहरों में नल और बोरिंग, कस्बों में कुएं और हैंडपंप, गांवों में तालाबों और नदी, जब तक इनमें पानी है हम बेफिक्र होकर इसका उपयोग करते हैं। घरों में, दफ्तरों में, बाग बगीचों में, लॉन में, गैरेज में पानी को बेहिसाब काम में लेते हैं। दरअसल पानी को हम अपने हिस्से में आई जायदाद मानते हैं, जबकि वो है समूची समाज की संपदा। पानी पर हक है पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का और गरीब अमीर सबका। लेकिन हमारा रवैया होता है दूसरे की प्यास की कीमत पर अपना आनंद भोगने वाला। जरा मरुस्थल की झाड़ियों की ओर झांक कर देखिए कि कितने मील चलकर औरतें पानी लाती हैं। जरा सूखती फसल के आगे लाचार किसान की आंख में झांक कर उसका पानी ना पिए। जरा अपने ही शहर की किल्लत वाली बस्तियों में पानी की मारामारी देखें और महसूस करें कि पानी कितना कीमती है। वहां बूंद बूंद अनमोल है और हम यहाँ लापरवाही, मौज शौक या अपने शगल के पीछे कितना सारा पानी बर्बाद कर देते हैं। बड़े शहरों में जहाँ बहुमंजिला इमारतें और बड़े बड़े परिसर हैं, वहाँ छत का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा होता है। इन जगहों पर निश्चित तौर पर छत के पानी को जमा करने और ज़मीन में उतारकर भूजल स्रोतों को रिचार्ज करने की व्यवस्था हम सबको मिलकर करनी चाहिए। कई प्रदेशों में सरकार भवन निर्माण के साथ ही वर्षा के जल को इकट्ठा करने की व्यवस्था अनिवार्य करती जा रही है। इससे हर मकान में टांका बनाना अनिवार्य हो जाएगा। जब हम खेतों में पानी देते हैं तब वास्तव में समूची जमीन को पानी देते हैं, जबकि कई फसलें, खासकर फल फूल वाले पेड़ पौधों में पानी की जरूरत होती है केवल जड़ को। यानी सिंचाई में 70% तक पानी व्यर्थ चला जाता है, केवल 30% पानी ही काम में आता है। कई प्रगतिशील किसान फव्वारा सिंचाई पद्धति काम में लेते हैं, पर कुछ मामलों में उससे भी पानी की बर्बादी होती है। बूंद बूंद सिंचाई की पद्धति ऐसे मामलों में ज्यादा कारगर होती है जहां सर्वे करके पौधे की जड़ें होती हैं, वहां खोलने व बंद किए जा सकने वाले छेद होते हैं जिनसे बूंद बूंद पानी टपकता है। इससे सीधे जड़ों को पानी मिलता है। जितना भी पानी उपलब्ध है वो ज्यादा समय तक ज्यादा लोगों को उपलब्ध हो सके और आने वाले कल के लिए पानी को संग्रहित करने की हम ऐसी तैयारी कर सकें कि बरसने वाले पानी की हर बूंद धरती के ऊपर या भीतर जमा की जा सके, ताकि वक्त जरूरत काम आए, हम अकाल को अंगूठा दिखा सकें और उठा सकें हरे भरे सरसब्ज संसार में रहने का आनंद। क्योंकि पानी से करे प्यार वो देगा हरियाली और बहार, तो फिर देर किस बात की। इस बार मानसून में जल संग्रह के तरीके अपनाएं और जल संकट से निरात पाएं।
1: जल संरक्षण, ये था आज का चिंतन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर

सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर अनुराधा मराठे का। ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। पशुओं को बरसात में होने वाले रोगों से बचने के लिए क्या करना है, वाचक स्वर वाणी महोदय।
1: किसान भाई बहनों ने राम राम। आज हम कृषि चर्चा में बात करांगा पशु नमा होने वाला गलघोटू एक टंगिया रोग मुंह पका नखुर पका रोग का नियंत्रण का बारा में, वाचक स्वर छे वाणी महोदय। भाई बहनों ने बारिश का मौसम में पशु नमा कई तरह का रोग होने की संभावना रहे, जैसा कि गलघोटू एक टंगिया मुंह पका नखुर पका। सबसे पहला बात कराए गलघोटू रोग की। गलघोटू रोग बारिश में बहुत तेजी से फैला जाए, ये एक जीवाणु जनित रोग छे। ये रोग संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में दूषित चारा लार द्वारा फैलाए। ये रोग से ग्रसित पशु ख तेज बुखार आवज, न आँख न लाल हुई जाए, न सांस लेना में भी दिक्कत आवज, न साथज पशु जब सांस ले तो मसी घर्र घर्र की आवाज आवाज, पेट दर्द न मुँह से लार गिरना लगाज, न पशु खाणो पीणो न जुगाली करनो बंद करी दे, पशु की गर्दन में सूजन आई जाए, दस्त लगी जाए, न साथ दूध उत्पादन भी पशु न को कम हुई जाए। भाई बहनों ने अगर ध्यान नहीं दियो जाए तो एक या दो दिन में पशु की मृत्यु भी हुई जाए। पशुपालक घर पर भी प्राथमिक उपचार करी सकज, हल्दी नौसादर कपूर सौठ न गुड़ पशु न कर खिलाना चाहिए, अजवाइन की धुनी देनु चाहिए, गला की सूजन का लेना गुनगुना पानी में नमक डाली न सिकाई करनो चाहिए। ये सब उपचार से कुछ समय का लेना राहत तो मिले, लेकिन एका तुरंत बाद पशु नख पशु चिकित्सक का पास ले जानो चाहिए। अब बात करा एक टंगिया रोग ख लंगड़ा बुखार का नाम से भी जाने जाए। एमा पशु का बहुत तेज बुखार आवे, न पशु सुस्त हुई जाए, न एमा भी पशु खाणो पीणो छोड़ी दे, साथ पैर न

0: पर पुट्ठा पर न गर्दन की मांसपेशी नमा सूजन दिखाई दे न सूजन का वहाँ बहुत तेज दर्द होए एक टंगिया रोग से ग्रसित पशु का चलनो उठना बटना में मुश्किल हुई जाए न एम जी जीवाणु हो वो गैस पैदा कर न दबाव पर चढ़ चढ़ की आवाज आवाज ई लक्षण नसी हम एक टंगिया रोग की पहचान कर ही सका एक बचाव करना पशु न को टीकाकरण करानु चाहिए साथ ही संक्रमित पशु ख स्वस्थ पशु नसी अलग कर देनु चाहिए एक टंगिया रोग में पशुपालक नख आयोडीन को घोल अजवाइन की धुनी घाव पर देनु चाहिए न घाव वाली जगह पर एक चीरो या कट लगाई देनु चाहिए ई रोग का जीवाणु हवा में मरी जाए ई घरेलू उपाय अपनाने के बाद पशु चिकित्सक के पास पशु नख जरूर ले जानु चाहिए अब बात करें मुँह पका न खुरपका रोग का बारा में मुँह पका न खुरपका रोग विषाणु जनित रोग छे एम पशु न की मृत्यु दर बहुत कम हो लेकिन पशु न को दूध उत्पादन क्षमता में कमी आई जाए खुरपका न मुँह पका रोग होना पर पशु न का खुर पकी जाए न उनमें फफोला हुई जाए थन न जीभ न पर छोटा छोटा फोड़ा हुई जाए न बुखार आवज ई भी छूत की बीमारी होए एक लेना खुरपका रोग से ग्रसित पशु कभी स्वस्थ पशु नसी अलग रखनो चाहिए प्राथमिक उपचार करना बोरिक एसिड पोटाश फिटकरी सी घाव नख अच्छी तरह साफ करनो चाहिए जेका सी घाव न पर मक्खी न नहीं बैठा मक्खी बटने सी रोग अरु ज़्यादा खतरनाक हुई जाए नीम की पत्ती नख पानी में उबाली न ऊना पानी सी पशु नख निलावनो चाहिए न एंटीसेप्टिक पाउडर लगाई देनो चाहिए साथ जल्दी से जल्दी पशु चिकित्सक दिखाना चाहिए जीवाणु न विषाणु नका द्वारा फैलने वाला दो ही रोग घातक होए विषाणु जनित रोग न कलना कोई दवाई न एंटीबायोटिक नहीं होता है जीवाणु जनित रोग नसी ग्रसित पशु नख इलाज करी न बचाए जा सके पशु नख जीवाणु न विषाणु जनित रोग नसी बचावना कलना हमका हमारा पशु नको टीकाकरण जरूर कराना चाहिए तो किसान भाई बहनों आज की कृषि चर्चा में बस इतो छ
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा पशुओं को बरसात में होने वाले रोगों से बचाओ वाचक स्वर था वाणी महोदय का ये आकाशवाणी खंडवा है सुबह के 6:50 हुए हैं लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम विवरण

अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए विश्व दुग्ध दिवस पर दुग्ध संघ संयंत्र खंडवा के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेंद्र कराहे से फिरदौस की बातचीत।

हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा सुबह 7:20 पर। निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 8:15 पर। आप अपने फरमाइशी फिल्मी नगमे सुनेंगे कार्यक्रम आपके मीत ये गीत में सुबह 8:30 से। 9:00 से राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

जिले की चिट्ठी। इसे आकाशवाणी भोपाल से सुबह 10 बजे अनुप्रसारित करेंगे और 10:05 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

सुबह 10:35 पर ग्राम लक्ष्मी के अंतर्गत आज सुनिए वार्ता महिलाओं में तनाव प्रबंधन। वार्ताकार मनोवैज्ञानिक श्रवि अमर अत्री। शाम 6 युववाणी का आज का क्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। फिल्म संगीत का मजा लीजिएगा शाम 6:30 से।

7:21 पर आप सुनेंगे खेती गृहस्थी। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे और इसके बाद राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब सुनिए ताजा खबर।

ताजा खबर में सुनिए आज प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित की गई युवा रैली। इस अवसर पर जन अभियान परिषद द्वारा खंडवा में नशा मुक्ति अभियान के तहत उत्कृष्ट विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी ने नशा मुक्ति की शपथ ली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर ही डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड एवं SDERF कार्यालय जिला खंडवा में तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के विरुद्ध जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नशीले पदार्थों का सेवन न करने की शपथ कार्यालयीन स्टाफ द्वारा ली गई। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला हुई संपन्न। रविवार को कृषि महाविद्यालय खंडवा में जिला स्तरीय कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके दौरान उपस्थित किसानों ने प्रधानमंत्री के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को भी सुना। इस दौरान किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती

मृदा स्वास्थ्य सुधार, उत्पादन लागत में कमी और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन एवं विपणन संबंधी जानकारी दी गई। अब खबर खेल जगत से। राज्य स्तरीय अधिकारी कर्मचारी खेल प्रतियोगिता में खंडवा की नीतू ठाकुर जुवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में बनी प्रदेश चैंपियन। छतरपुर में 27 से 31 मई तक आयोजित 12वीं राज्य स्तरीय अधिकारी कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता में एथलेटिक्स स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हरसूद विकास खंड की शासकीय प्राथमिक शाला की शिक्षिका नीतू ठाकुर ने जुवेलिन थ्रो में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बेंगलुरु लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियंस बनी। गुजरात को 5 विकेट से हराया कोहली ने छक्का लगाकर जीत दिलाई। रसिक को 3 विकेट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। अब एक नजर मौसम के हाल पर। कल दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समाचार संकलन आदित्य का।

0: ईछे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजने वाले हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए विश्व दुग्ध दिवस पर दुग्ध संघ संयंत्र खंडवा के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेंद्र कराहे से फिरदौस की बातचीत।
2: एक जून को हम मना रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस। इसी बारे में हमसे बात करने के लिए हमसे जुड़े हैं सुरेंद्र कुमार कराहे जी। कराहे जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। सुरेंद्र कराहे हूँ, क्षेत्रीय प्रबंधक दूध संचालक
2: जी।
3: इसमें हम लोगों को गांव में जाकर के एक्टिविटी करनी होती थी, गांव में दूध समितियां निर्माण करनी पड़ती थी नई नई, और उनके से हम लोग दूध संकलन करके कोऑपरेटिव माध्यम से पहले सोसाइटी ऑर्गेनाइज करते थे, कोऑपरेटिव में उसका रजिस्टर्ड कराते थे और दूध कलेक्शन किया जाता था गांव स्तर पे ही। वहीं पर उनके रिकॉर्डिंग जांच वगैरह ये सारा किया जाता था और उसको फिर दूध सीड केंद्र तक या जो अपना संयंत्र है प्लांट खंडवा तक विभिन्न ट्रांसपोर्टर के माध्यम से लाया जाता है, प्रक्रिया होती है। फिर यहाँ आने के बाद में दूध का संसाधन किया जाता है
2: जी। जैसे ये आपने जो बताया ये पैक्ड दूध होता है, इसके अलावा बहुत सारे हमारे किसान भाई होते हैं जो पशुपालन करते हैं
3: जी,
2: तो सरकारी तौर पर उन्हें कोई मदद मिलती है व्यवसाय करने के हिसाब से?
3: हाँ, व्यवसाय करने के हिसाब से इसमें दूध समिति के माध्यम से वेटनरी विभाग के द्वारा संचालित गवर्नमेंट की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। संघ की सहभागिता ये होती है कि वहाँ पर जो दूध कलेक्शन किया जाता है उनको समितियों के माध्यम से हम लोग मतलब मार्केट की व्यवस्था ग्राम स्तर पे उपलब्ध कराते हैं। जो क्षेत्रीय किसान रहते हैं वो अपने बैंकों के माध्यम से, पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से, कामधेनु योजना के अंतर्गत, डेयरी उद्योग विभाग की योजनाओं के अंतर्गत, अन्य योजनाओं के अंतर्गत उसमें आवेदन करके, मुख्यमंत्री की अभी बहुत योजनाएं भी चल रही हैं, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा भी दूध उत्पादन के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है और उनके सारी योजनाओं, गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ संचालन क्रियान्वयन इनका जो पशु चिकित्सा विभाग होता है डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी उनके से ये किया जाता है
2: जी।
3: पर भी दूध उत्पादन कराने की स्थिति आती है वहाँ पे दूध संघ उनके सहयोग

0: मुख से बूथ समितियां स्थापित करते हैं, जहां पर कि उनको सारी सुविधाएं गांव में दी जाती है, मिल्क टेस्टिंग की लेकर के मिल्क कलेक्शन और मिल्क परिवहन, ये सारी सुविधाएं दूध संघ के माध्यम से उनको उपलब्ध कराई जाती है।
1: तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए क्या पैमाना तय किया गया है?
0: देखिए, दूध में जो मेजर तत्व होते हैं वो दो होते हैं, एक तो फैट होता है जिसको वसा कहते हैं अपन। तो दूध के अंदर में जो प्योर दूध है उसके अंदर में लगभग 8 से 9% भैंस के दूध में और 4 से लेकर के 6% के बीच में गाय के दूध में, ये अलग अलग नस्ल के हिसाब से डिपेंड करता है फैट के परसेंटेज। और उसके अलावा जो दूध में होता है दूसरा तत्व होता है SNF, जिसको कि सॉलिड बट नॉट फैट कहा जाता है। मतलब जो दूध के अंदर में ठोस पदार्थ होता है उसमें एक भाग हो गया फैट, यदि फैट को हटाए दूसरा ठोस पदार्थ मिलेगा, उसको साधारण भाषा में अपन प्रयोग करेंगे तो उसमें पाउडर जो कहलाता है। तो एक तो पाउडर हो गया और एक फैट हो गया, फैट यानी घी, ये दोनों के कंपोजिशन होते हैं दूध के अंदर में। और इसका जो शेष भाग है SNF होता है करीब भैंस के दूध में 9% और गाय के दूध में 8.5%, ये औसतन माना गया है गवर्नमेंट के मानक के अनुसार। तो 8 फैट हो गया और 9 SNF हो गया उसमें, 8, 9, 17 मतलब 83 से 84 भाग उसमें पानी का होता है जो साधारण पानी। उसके जैसे ही गाय के अंदर में 4.5% फैट होता है और 8.5% उसमें SNF पाया जाता है, दो ही मिला करके हुए लगभग 13। तो औसतन जो रूप से होता है गाय के दूध में 87% पानी और 13% सॉलिड पदार्थ होते हैं। कुछ जांच के लिए समितियों के ऊपर में निर्धारित पैमाने के लिए मशीनें कंप्यूटराइज व्यवस्था है, अभी खंडवा स्तर में लगभग 80 समितियों में इनकी वो व्यवस्था चल रही है, IMCS लगे हुए हैं वहाँ पर, और NDDB का जो भी नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है उसके द्वारा कलेक्शन सेंटर पे उपलब्धता कराई जा रही है। ये या तो दूध संघ भी कराता है नहीं तो विभिन्न गवर्नमेंट की योजनाओं के अंतर्गत समितियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। सबसे पहले समिति को रजिस्टर्ड कराना होती है, रजिस्टर्ड कराने के लिए जो गांव स्तर पे होते हैं कम से कम मिनिमम उसमें 25 सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ती है जो अपने दूध का उत्पादन करके दूध संघ को उपलब्ध करा पाएंगे। मिनिमम 25 और अधिकतम कितने भी सदस्य उसमें मेंबर बन सकते हैं। अपने गाँव के एरिए के होना, गाँव के एरिए में 1-2 किलोमीटर तक का एरिया उसके कार्य योजना में जोड़ लिया जाता है तो कार्य क्षेत्र में वो गाँव को भी कर लिया जाता है। ऐसी इस तरह की समितियां बना करके उनको कोऑपरेटिव विभाग जो गवर्नमेंट का वर्क करता है सहकारिता विभाग उसके माध्यम से जिले स्तर पे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सेवाएं के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड कराई जाए और वो प्रतिवर्ष उनका ऑडिट होता है। इस तरह से ये समिति का संचालन दूध संघ के द्वारा उनको परिवहन की व्यवस्था दी जाती है जिनके माध्यम से उसको दूध को कलेक्शन करके बड़े प्लांट तक या चिलिंग सेंटर तक उठाया जाता है, ये प्रक्रिया होती है।
1: आम जनता अगर ये जानना चाहे कि दूध में कोई मिलावट है तो मिलावट की पहचान कैसे करें?
0: मिलावट की पहचान जैसे आजकल क्या नेचुरल दूध के अलावा मैनमेड भी बनाया जा रहा है जिसकी बहुत जगह मतलब शिकायतें भी होती है, तो उसको नापने के लिए मतलब यदि हम अधिकृत नहीं होते लेकिन उसमें जानकारी मतलब जो मशीनें हैं या उनकी जो आजकल कंपनियों ने वो निकाली हुई स्ट्रिप्स निकाली हुई जिनके माध्यम से उसमें आयल या फैट या शुगर के तत्व या स्टार्च जिस तरह की भी मिलावट हो सकती है जैसे जिनमें संभावित है दूध में जो मिलावट की उनकी जांच के लिए किट मिलती है और वो किट का प्रयोग चिलिंग सेंटर स्तर पे भी और दूध समितियों के स्तर पे भी किया जाता है। वो जांच करने के बाद ही शुद्धता का दूध समितियों में कलेक्शन किया जाता है और दूध संघ स्तर पे भी उसी दूध की उसी रूप में जांच की जाती है। तो उसके लिए लेब होती है, गांव स्तर पे तो लेब की व्यवस्था नहीं होती, वहां पे जो सोसाइटी किट के माध्यम से कलेक्शन जिसके उसमें डाउट होता है उन सदस्यों के दूध में करती है और जो रूटीन होते हैं सदस्यों से ही दूध क्रय किए जाते हैं। तो जिसकी ऑथेंटिक जानकारी दूध समिति के पास में उपलब्ध होती है कि किसने दूध दिया है, कितनी मात्रा का दूध दिया है, उसका प्रतिदिन का प्रति सदस्य के अनुसार से सैंपल समिति पे कलेक्ट किया जाता है और उसी को मतलब जांच के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यदि किसी तरह की कोई मिलावट की संभावना होती है तो वो सैंपल को जांच के लिए बड़ी डेयरियों पे सीट केंद्र स्तर पे भेजा जाता है, केमिकल्स के द्वारा उनकी जांच की जाती है और एक स्ट्रिप वाली जो किट है वो हम समिति पे भी उपलब्ध कराते हैं कि उसमें ग्लूकोज या शुगर स्टार्च या यूरिया इस तरह के कोई मटेरियल ना मिलाए गए हों। बाकी इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जांच कराई जाती है, यदि सैंपल में कोई मिलावट होती है तो उनके माध्यम से सैंपलिंग की जाती है और उसको उनके लैब के तक मतलब भेजा जाता है जहां से कि उसके रिजल्ट आने के बाद में जुर्माना या जो भी सजा है वो हो सकती है।
1: जी, जैसा कि इसकी स्थापना 1 जून 2000

0: 2001 से की गई है और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो हमारा भारत जो है दुग्ध उत्पादकता में सबसे आगे है।
1: जी हाँ,
0: तो अगर हम इसकी उत्पादकता देखें तो ये कम से कम कितनी हो सकती है?
1: मैडम, उत्पादकता का जो पैमाना है, वेटनरी विभाग के द्वारा सांख्यिकी जानकारी कलेक्ट की जाती है, जिसमें कि कितने पशु होते हैं वहाँ पे, किस टाइप के पशु हैं, कितने दूध देने वाले हैं, कितने सूखे हैं, और दुधारू के अलावा जो जानवर रहते हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर वहाँ काउंसलिंग होती है और उनकी मॉनिटरिंग होती है। व्यक्तियों की जैसे जनगणना का चलता है, ऐसे ही उनका पशुओं की जनगणना का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो वो जानकारी आपको ऑथेंटिक जानकारी वेटनरी विभाग के द्वारा उपलब्ध हो सकेगी।
0: छोटे व्यवसाय जिनके पास, किसी के पास 20 या 30 गाय होती है, 30 भैंस होती है या बकरियां होती है, तो वो उनका दूध निकाल के अपने एरिया के जो छोटे आसपास की जगह होती है वहीं पर अपना दूध बेच देते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूध को स्टोर करना पड़ता है, तो क्या विधि अपनाई जाती है?
1: नहीं, स्टोर करने के लिए यदि उसके पास संसाधन है तो ही वो स्टोर किया जा सकेगा, वरना दूध की लाइफ होती 4 से 6 घंटे। यदि 4 से 6 घंटे तक उस दूध को उपयोग नहीं किया गया या उसका मतलब रूप परिवर्तन नहीं किया गया, रूप परिवर्तन में या तो घी में परिवर्तित किया जाए, मावे में परिवर्तित किया जाए या और बड़ी डेयरियों में पाउडर में परिवर्तित किया जाता है, तो ये जब तक दूध का रूप परिवर्तन नहीं करें तब तक उसको अपन 4 घंटे से 6 घंटे से ज्यादा दूध की लाइफ नहीं होती। उसके बाद वो दूध में विषाणु बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण से वो दूध खाने योग्य नहीं रह पाता है। एक नॉर्मल तरीका तो ग्रामीण स्तर पे ये होता है कि उसको उबाल लिया जाता है, उबालने से बहुत सारे उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, 2-4 घंटे उसकी लाइफ और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यदि लंबे समय उसको रखे जाना है तो कम से कम 4 डिग्री तक टेम्परेचर पे उसको ठंडा करना होगा, नहीं तो वो दूध खराब हो जाए।
0: आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: विश्व दुग्ध दिवस पर अभी आप सुन रहे थे दुग्ध संघ संयंत्र खंडवा के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेंद्र कराहे से फिरदौस की बातचीत। विशेष कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही समय में हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में लॉन्च की ड्रोन यूनिट और ट्रैफिक साथी एप्लीकेशन। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार जीता आईपीएल खिताब, विराट कोहली बने मैच के हीरो। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत म्यांमार संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर शनिवार को आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया से की थी। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। कल 2 जून को वे मुंबई में उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि

0: शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान किसानों को मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। इससे पहले रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसान संगठनों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान और रासायनिक खादों का असंतुलित उपयोग खेती के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।
1: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ, 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। आप सबसे मेरी अपील है, इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो, हम खेत बचाएं तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा।
0: इंदौर में रविवार की शाम लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांधी हाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अहिल्याबाई का शासन आज भी रामराज्य की याद दिलाता है। उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत और न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी को अहिल्या गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम इंदौर में डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस मौके पर 18 हाईटेक ड्रोन और 10 पुलिस वाहन भी इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए। ये ड्रोन कानून व्यवस्था और यातायात निगरानी में पुलिस की मदद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंदौर में 3 नए थाने के खोले जाने की घोषणा भी की।
2: पुलिस कमिश्नर के माध्यम से 3 पुलिस थाने की आपने डिमांड की है, 3 पुलिस थाने भी इंदौर में बनाए जाएंगे और आवश्यक पुलिस बल जो निर्धारित मापदंड के हिसाब से है अभी कम है, निश्चित रूप से हमारी सरकार एक एक करके वो सारे काम कर रही। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड स्थापित कर रहे हैं। पुलिस की भर्तियों में भी हमारी सरकार के द्वारा लगभग 22,500 पदों की भर्ती हर साल करते जा रहे हैं।
0: वहीं इंदौर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर यादव ने उज्जैन संभाग के 31 समर्पित शिक्षकों को भी सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में वे लोग शामिल थे जो नदी नाले पार कर और लंबा रास्ता पैदल तय कर दूर दराज के बच्चों तक पढ़ाई पहुंचा रहे हैं। 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। इस साल की थीम जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। इस बार वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। वहीं भारत में इस बार 15 मई से 5 जून तक 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त बर्तनों को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल टिकटिंग अपनाने की अपील की जा रही है। वहीं भोपाल में कल पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ शहरी आवास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें देश भर में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शहरी योजनाकारों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के बीच शहरों के विकास में प्रकृति और स्थानीय पारिस्थितिकी को केंद्र में रखना जरूरी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में नीदरलैंड से वापस लाई गई 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन 24 पट्टिकाओं में चोल वंश की उपलब्धियां और उनकी समुद्री ताकत का वर्णन है। श्री मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का भी उल्लेख किया जो 6वीं-7वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल जिले में एक अनोखा गांव है जो सदियों पुरानी जनजाति कला को जीवित रखे हुए है। ये कला मूलतः भरेवा जनजाति की परंपरा है, लेकिन अब सामान्य समाज के लोग भी इसे अपना रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
4: जिला मुख्यालय बैतूल से महज 5 किलोमीटर दूर बसा टिगरिया गांव अब क्राफ्ट विलेज के नाम से अपनी पहचान बना चुका है। इस हस्तशिल्प कला को जीवित रखने वाले और गांव को अनूठी पहचान दिलाने के लिए वाघमारे परिवार मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह परिवार पीतल और बेल मेटल से आदिवासी संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां बनाता है। इनकी हस्तशिल्प कला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। इनकी मेहनत के चलते अब उनके गांव को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज घोषित कर दिया है। भरेवा कला के काम में माहिर बल

0: देव वाघमारे बताते हैं।
1: बैतूल जिले के 9-10 गांव में जो भरेवा समुदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग इस काम को करते हैं। बड़े गर्व की बात है कि बैतूल जिले को पहला जीआई टैग मिला हुआ है और भरेवा कंगन के नाम से कलाकृति तैयार किया था जो नेशनल अवार्ड जीत चुका है 2024-25 का। लगभग 500 से ऊपर कलाकार बैतूल जिले के अंदर इस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे।
0: आकाशवाणी समाचार के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
2: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। प्रदेश के 55 जिलों में से 1,44,000 से अधिक प्रगणकों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती और जानकारी जुटाई। खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल तरीके से की गई। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें परिवारों की सामाजिक और आर्थिक जानकारी ली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी कल से 5 जून तक मालवा निवाड़ अंचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिलों का दौरा करेंगे। हर जिले में जिला समन्वय समिति की बैठकें और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इस साल मानसून 5 से 7 दिन देरी से आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने का अनुमान है। विभाग ने आज धार और खरगोन में ओले बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि झाबुआ समेत कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं कल आंधी और बारिश के चलते प्रदेश में तापमान 42 डिग्री से नीचे आ गया और सबसे ज्यादा गर्मी शाहजहांपुर में 41.4 डिग्री दर्ज की गई। रायसेन जिले के छोटे से गांव सेमरी की बेटी अंजना यादव ने माउंट एवरेस्ट फतह कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अंजना का साहस और संकल्प सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है। एवरेस्ट विजेता अंजना आज भारत लौट रही हैं और प्रदेश में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। विराट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार 2 आईपीएल खिताब जीतने वाली बेंगलुरु अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ इस खास क्लब में शामिल हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल आगरमालवा, झाबुआ, शिवपुरी, राजगढ़ और गुना समेत विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया। नीमच आरसेटी संस्थान के द्वारा 3 जून से चीताखेड़ा मेन रोड कथित विश्राम भवन के पास महिलाओं के लिए निशुल्क 31 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सीहोर में नगरपालिका द्वारा कलेक्टर कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर उपवन में कल डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर मातृभाषा.com और हिंदी सेवी मातृभाषा उन्नयन संस्थान के द्वारा व्याख्यान का आयोजन कल किया गया और डिंडोरी में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा।
1: गुड मॉर्निंग खंडवा।
2: गुड मॉर्निंग खंडवा।
3: गुड मॉर्निंग खंडवा के आज के इस अंक में हाजिर हूँ मैं, आपके रेडियो दोस्त फिरदौस। आप सभी को सलाम नमस्ते।

जी हाँ दोस्तों, माँ बाप अगर अपने बच्चों को और बच्चे अगर अपने माँ बाप को ना देखें तो उनका जी घबराने लगता है। औलाद की देखभाल और उनके पालने पोसने तक की सारी जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते माँ बाप न जाने अपनी किन किन ख्वाहिशों की कुर्बानियाँ दे देते हैं। अपने सपनों को ताक पर रख कर बच्चों के सपने पूरा करने में अपना सब कुछ लगा देते हैं। इसी समर्पण, त्याग और बलिदान को सम्मानित करने के लिए 2012 में संयुक्त संघ महासभा ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि माँ बाप द्वारा अपने बच्चों का निस्वार्थ पालन पोषण करने के लिए और आजीवन करने वाली अपनी कुर्बानियों के लिए माँ बाप को सम्मानित किया जा सके। दोस्तों, वैसे तो माँ बाप की कुर्बानियों, प्यार और समर्पण को हम किसी भी तरह चुका ही नहीं सकते, लेकिन उन्हें इज्जत देकर शुक्रिया तो कह ही सकते हैं, उनकी दुआएं तो ले ही सकते हैं। हमारे माँ बाप हर तरह के सुख दुख में हमारे साथ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे भगवान

0: इसी बारे में अपने विचार व्यक्त कर रही हैं श्रीमती हर्षिता पाटीदार जी।
1: को मेरा सादर प्रणाम। मैं हर्षिता पाटीदार, सहायक प्राध्यापक, आज विश्व माता पिता दिवस के अवसर पर अपने विचार आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। कभी कभी जीवन हमें कुछ ऐसे अनुभव देता है जो माता पिता के प्रेम, त्याग और समर्पण का एक वास्तविक अर्थ समझा देता है। मुझे अपने जीवन का एक ऐसा समय याद आता है जब मैं MPBS परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उस समय लगा कि सपना तो सिर्फ मेरा ही है, लेकिन धीरे धीरे वह सपना सिर्फ मेरा ही नहीं रहा, मेरे माता पिता का भी सपना बन गया। मैंने तो सिर्फ पढ़ाई की थी, लेकिन मेरे माता पिता ने उस सपने को मेरे साथ जिया। और जब ज़िंदगी में मैं पहली बार असफल हुई तब लगा कि सब कुछ हार गई, सब कुछ बिखर गया, लेकिन उस दिन सिर्फ मैं ही नहीं टूटी थी, मैंने महसूस किया कि आंसू सिर्फ मेरी आंखों में ही नहीं थे, मेरे माता पिता की आंखों में भी थे। मैं निराश हो गई थी, मैं टूट गई थी, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और मैंने तो हार ही मान ली थी, पर उन्होंने मुझे फिर से विश्वास दिलाया कि मैं कर सकती हूँ। उस समय मैंने महसूस किया कि माता पिता केवल हमारी जिम्मेदारियाँ ही नहीं निभाते, वे हमारे हर संघर्ष को अपने भीतर भी जीते हैं। और शायद यही कारण है कि हर वर्ष 1 जून को विश्व माता पिता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केवल एक अवसर ही नहीं है, बल्कि माता पिता के उस निस्वार्थ प्रेम, त्याग, समर्पण और ऐसे अनगिनत प्रयासों को सम्मान देने का दिन है जिन्हें हम कई बार महसूस तो कर पाते हैं पर हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और कहीं पे ये भी हमने देखा है कि हम अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है, लेकिन शायद हमने ये कभी सोचा ही नहीं, या शायद हमें समय ही नहीं मिला सोचने का कि उन्होंने हमारे लिए छोड़ा क्या क्या है। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपना आराम और अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, ताकि हमारे सपने अधूरे ना रह जाए। कई बार उनकी चिंता डांट के रूप में दिखती है, बुरा भी लगता है जब डांट पड़ती है तब, लेकिन फिर भी उसके पीछे छुपा होता है केवल उनका प्रेम, सुरक्षा का एक भाव। और जब हम खुद जीवन के अलग अलग पड़ाव में जाते हैं, जब हम स्वयं जिम्मेदारियां निभाना शुरू करते हैं, तब समझ आता है कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता है या शब्द नहीं होते हैं, बल्कि वो जो धैर्य, चिंता, त्याग और उनका जो निस्वार्थ प्रेम है वो होता है। जब हम खुद परिवार की जिम्मेदारियां जब निभाते हैं तो समझने लगते हैं कि हमारे माता पिता ने कितनी चुपचाप से हमारी खुशियों के लिए अपने हिस्से के संघर्षों को अपनाया होगा। और जब कभी कभी ऐसा, आज जैसे जो तकनीक और AI का समय है, हमारे पास संवाद के तो अनेक साधन हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम उनको समय ना देते हैं। कभी कभी माता पिता को ऐसा लगता है कि बच्चे हमें नहीं समझ रहे हैं, तो इस दूरी को कम करने का सबसे अच्छा जो उपाय है वो हमारे बीच संवाद का होना है। हमें थोड़ा समय उनको देना चाहिए, उनसे हमें थोड़ा समय मांगना चाहिए, जिससे हम अपने रिश्ते को और मिठास से भर सकें। और जब माता पिता की बात होती है तो मुझे सिर्फ इतना ही नहीं लगता है कि माता पिता वो होते हैं जो सिर्फ हमें जन्म देते हैं। जब हम विवाह के बाद हमें अपने जो सास ससुर मिलते हैं वो भी हमारे माता पिता होते हैं। और अगर हमारे रिश्तों में यदि अपनापन, सम्मान और समझ आ जाए तो वह सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि हम उनसे एक भावनात्मक तरीके से भी जुड़ जाते हैं।

आज की जो युवा पीढ़ी है, हम भगवान को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, जबकि हम शायद ये भूल जाते हैं कि जीवन का हमें सबसे सच्चा आशीर्वाद तो अपने माता पिता के रूप में पहले ही मिल चुका है। उनकी दुआएं कई बार वह ताकत बन जाती है जो कठिन रास्तों को भी आसान बना देती है। इस विश्व माता पिता दिवस पर आइए हम केवल एक दिन याद ना करें, बल्कि उनके प्रेम, संघर्ष, त्याग और समर्पण के प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि सच तो यही है कि हमारे सपनों की नींव में कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के अधूरे सपने भी जुड़े होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।

0: माँ बाप को अपने बच्चों की सेहत का बड़ा ख्याल रहता है और इसीलिए वे हमेशा उन्हें पौष्टिक आहार ही देते हैं। और ऐसा ही एक पौष्टिक और संपूर्ण आहार है दूध। रोजाना एक गिलास दूध बहुत सी बीमारियों को दूर रखता है। दूध से शरीर को वसा, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, प्रोटीन, खनिज, विटामिन्स ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस बारे में हम विस्तृत रूप से बात कर रहे हैं दुग्ध संघ संयंत्र खंडवा के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेंद्र कराही जी से, जिसे अभी आपने आज के विशेष कार्यक्रम में सुना। उन्हीं से की गई हमारे आगे की बातचीत सुनते हैं।
1: 1 जून को हम मना रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस। इसी बारे में हमसे बात करने के लिए हमसे जुड़े हैं सुरेंद्र कुमार कराही जी। कराही जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। 2019 में नया प्लांट खंडवा में डाला गया है, जहाँ पर की 40,000 लीटर दूध प्रतिदिन कलेक्शन किया जा सकता है। उसके साथ साथ ही पॉस्चराइजेशन करके सारी संसाधन की प्रक्रिया संशोधन किया जाता है दूध का, और उसके बाद में पैकिंग करने के बाद में उसको मार्केट में आउटलेट्स के माध्यम से विक्रय किया जाता है। तो वो सारी प्रक्रिया करने के लिए प्लांट खंडवा में निर्मित है, और न्यू जो एग्रीकल्चर की योजना है उसके अंतर्गत उसको संचालित किया गया था और वर्तमान में कार्यरत है।
1: जी,
2: वर्तमान में 25,000 का कलेक्शन प्रतिदिन दूध संघ ने खंडवा प्लांट पे किया गया है। उसके अलावा जो वहाँ से उत्पादन हो रहा है उसमें सारे प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है दूध के अलावा, मतलब पनीर है, श्रीखंड है, छाछ है, बटर मिल्क है, कि दही होता है, ये सारे सब पैक्ड स्थिति में बिल्कुल प्योरिटी के साथ में अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। और इसके लिए आउटलेट बने हुए हैं दूध संघ के मार्केट के अंदर भी, ग्रामीण स्तर पे भी ये दूध की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। बारिश का सीजन और ठंड का जो मेन सीजन कहलाता है उस टाइम पे 100-150 लीटर तक की गांव की समितियां हैं, तो वो गर्मी में जाकर के वो मुश्किल से 25 से 30 लीटर पे हो जाती है।

0: दूध का उत्पादन बिगड़ जाता है, उसके साथ ही साथ उत्पादन के साथ साथ जो उपयोगकर्ताओं की भागीदारी है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि दूध के अलावा भी दही छाछ बाकी और अन्य पदार्थ गांव स्तर पे भी उनका उपयोग कर लिया जाता है, जो मतलब फुल उत्पादन करने वाले हैं उनके घर में ही उपयोग हो जाता है ज्यादा मात्रा में, योग्य दूध है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो कई समितियां बंद भी होती है जिनको बारिश काल में पुनः चालू कर दिया जाता है, वर्षा काल में जब दूध उत्पादन उनमें बढ़ता है तो वो समितियां वापस से भी वही हो जाती
1: है। महिलाएं इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, तो इस बारे में कुछ रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि हमारी इस बार की थीम सर महिला किसानों का सम्मान करना है।
0: बहुत सारी समिति हमारी दूध समिति महिला समिति के नाम से भी गठित की गई है, जहाँ पे केवल महिलाएं दूध उत्पादन भी करती हैं, वही लोग चलाने का काम संचालन का काम भी करती है, सेक्रेटरी भी उनके होते हैं, मैनेजमेंट कमेटी भी महिलाओं की होती है, तो ऐसी दूध समितियां भी मतलब काफी मात्रा में महिलाओं के माध्यम से संगठित करके उनको भी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराया जाता है। जो महिला समूह संचालित हो रहे हैं उनमें भी यदि दूध की उपलब्धता होती है तो उनको दूध संघ के माध्यम से जोड़ करके समितियों में जोड़ा जाता है, जहां ज्यादा संभावना होती है तो महिला समिति के रूप में भी उनको पंजीकरण कराया जाता है। अधिकांश गांवों में भी जो पूर्व काल से चला आ रहा है महिलाओं की भूमिका ज्यादा होती है दूध उत्पादन के लिए, दूध निकालने से लेकर के दूध पशु की रख रखाव वगैरह ये सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी महिलाएं उठाती है। छोटे स्तर पे भी यदि बैंक के माध्यम से कोई महिला समूह या महिला व्यक्तिगत रूप से भी लेना चाहे तो बैंकों के माध्यम से उनको लोन उपलब्ध कराया जाता है, तो वो अपने प्रकरण बना करके उसमें दूध उत्पादन के लिए समितियों के साथ भी जुड़ सकती है। मतलब दूध संघ का उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि जो बिचौलिए होते हैं उनसे किसानों को मुक्त कराया जाए और उनका दूध सही दाम से उनके निजी निवास स्तर से दूध उनको बेचने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ये मुख्य उद्देश्य दूध संघ का होता है।
1: जी बहुत सराहनीय काम है ये, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।

सेहत के लिए पेय पदार्थों के साथ साथ खाद्य पदार्थों की भी जरूरत होती है, और ऐसा ही एक खाद्य है सागर का मेवा।

0: मछली, प्रोटीन, विटामिन, फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 और कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होती है मछली। लेकिन इसके व्यवसाय में बहुत सारी अनियमितताएं हैं और इसी के लिए 5 जून को अवैध, अनाधिकृत और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आइए इस बारे में जानते हैं संदीप गंगराडे जी से।
1: अवैध और अनाधिकृत और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य महासागरों की खाद्य सुरक्षा, समुद्री जैव विविधता और आजीविका को खतरे में डालने वाले गैरकानूनी मछली पकड़ने के तौर तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस के मुख्य बिंदु बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना, संरक्षित प्रजातियों का शिकार करना और नियमों की अवहेलना करने वाली गतिविधियों को रोकना है। बिना सूचना दिए और अनियमित मछलियों को पकड़ने से होने वाले जो नुकसान है उसमें मत्स्य पालन, विश्वभर के लोगों के लिए भोजन, रोजगार, मनोरंजन, व्यापार और आर्थिक खुशहाली का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बढ़ती जनसंख्या और लगातार बनी हुई भुखमरी की इस दुनिया में मछली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य वस्तु के रूप में उभरी है। हालांकि मत्स्य पालन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किए जा रहे प्रयास अवैध, अनाधिकृत और अनियमित मछली पकड़ने की गतिविधियों से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इस तरीके से मछली पकड़ना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि यह हमारे समुद्री और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी अत्यंत विनाशकारी है। प्रतिबंधित समय में मछलियों को पकड़ा जाता है। प्रतिबंधित समय में मछलियों का ब्रीडिंग टाइम पीरियड होता है। इस समय शासन मछली पकड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। इस समय अनाधिकृत रूप से मछली पकड़ने से मछलियों की ब्रीडिंग प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है, जिसके कारण मछलियों की विभिन्न प्रजातियां विलुप्त हो गई है एवं होने के कगार पर है। आर्थिक फायदे को देखने के कारण अनाधिकृत रूप से मछली को पकड़ते हैं, जिससे इकोसिस्टम प्रभावित होता है। इन सभी तरीकों से मछलियों की आबादी खत्म हो सकती है और कुछ अवैध और विनाशकारी तरीके दिए गए हैं, जिसके कारण विस्फोट का उपयोग करना, इसमें डायनामाइट का उपयोग किया जाता है, इन प्रकार के केमिकलों का छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण मछलियाँ तुरंत मर जाती है एवं जल भी प्रदूषित हो जाता है। तालाबों में करंट छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण मछलियाँ अनाधिकृत रूप से मर जाती है एवं जो ब्रीडिंग टाइम पीरियड की जो मछलियाँ है वो भी मर जाती है, जिससे कि पारिस्थितिक तंत्र पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। द्वारा समय समय पर सूचनाएं प्रसारित की जाती है, लेकिन कुछ आर्थिक लाभ के दृष्टि को देखते हुए इस तरह के क्रियाकलाप में संलिप्त रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अनाधिकृत रूप से मछली पकड़ने वालों को रोकें एवं समय समय पर

0: समझाइश दे। शासन स्तर पर भी इस तरह की समझाइश समय समय पर दी जाती है एवं प्रयास किया जाता है। पर्यावरण को एवं इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए सभी को मिलकर के इस प्रयास को करना चाहिए, जिससे कि अनाधिकृत रूप से मछलियों को न पकड़ा जाए। धन्यवाद।
1: ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल

0: जरा हल्के
1: समझना जी मुझको सब देखो मैं अखियां मीचे
0: ओ कभी पीछे कभी आगे पीछे ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे।
2: जब बात हो सेहत की तो सिर्फ खाने पीने से ही हेल्दी रहेंगे ऐसा तो नहीं है, उसके लिए वर्जिश भी ज़रूरी है। क्योंकि आज हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के आदि हो चुके हैं, जबकि एक ज़माना था जब कहीं भी आने जाने के लिए या तो पैदल चला जाता था या फिर साइकिल इस्तेमाल की जाती थी। हमारी फिल्मों में भी बहुत से गाने साइकिल पर फिल्माए गए हैं।
3: माइकल है तो साइकिल है, माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं। अरे माइकल है तो साइकिल

0: अरे बादल है तो बरखा है,
1: बरखा जो नहीं बादल भी नहीं।
0: भाई माइकल है तो साइकिल है, माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं।
2: 3 जून को है विश्व साइकिल दिवस। पेट्रोल डीजल बहुत ही सीमित संसाधन है जिनका अत्यधिक दोहन होने से अब ये हमें आसानी से उपलब्ध भी नहीं हो पा रहे हैं और इनके अधिक उपयोग से हमारा पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, जबकि साइकिल परिवहन का एक सरल, किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ साधन है जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं और हमारी सेहत भी दुरुस्त बनी रहती है।

0: 5 जून को हम सभी मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। संयुक्त राष्ट्र इस बात को जानता है कि मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एक बहुत ही खास मुद्दा है, जो दुनिया भर के लोगों के कल्याण और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। साइकिल, सेहत और पर्यावरण के बारे में आइए अब जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा के वैज्ञानिक डॉक्टर वाई के शुक्ला जी से।
1: साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, प्रकृति की रक्षा के लिए उनको प्रेरित करना, बढ़ते प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए हमको उत्साहित करना। विश्व पर्यावरण समस्या से तात्पर्य प्राकृतिक संतुलन में उन खतरनाक बदलावों से है जो कि मुख्य रूप से अंधाधुंध जो औद्योगिकीकरण हुआ है उसकी वजह से, और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन अधिक मात्रा में हुआ इसकी वजह से ही समस्या पैदा हुई। उसमें मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन जो है तापमान बढ़ता जा रहा है, लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर तक कहीं कहीं पहुँच जाता है। प्रदूषण जो कि दो तरीके का होता है, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण, वनों की कटाई डिफॉरेस्टेशन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का नुकसान, और ओजोन परत में जो छेद हो रहा है इससे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो सीधी जो है हमारे स्किन पे पड़ती हैं, जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी जो है स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जो वाहनों से प्रदूषण होता है उसका भी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ईंधन बचाने के लिए एक जोरदार अपील की और उन्होंने ये कहा कि कम से कम एक दिन, हफ्ते में एक दिन नो कंजम्पशन डे यानी कि दहन मुक्त दिवस बनाने का निर्णय लें अपने लेवल पर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि महाविद्यालय में हमारी कुलपति महोदय के निर्देशानुसार हर सप्ताह शुक्रवार को यानी फ्राइडे को नो कॉमन संडे दहन मुक्त दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से ये निर्णय लिया गया कि हम या तो अपने साइकिल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि किसी ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है, या हम इलेक्ट्रिक वाहन ईवी का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी कर्मचारी अधिकारी पेट्रोल या डीजल के वाहन से ऑफिस नहीं आएगा। ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक साइकिल, पैडल साइकिल का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए कि हम यथासंभव मीटिंग्स वगैरह जो हों उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करें, जिससे कि वाहनों का कम से कम उपयोग हो, इसी बहुत आवश्यक हो तभी चलाएं। और इन सब चीज़ों को, इसका उद्देश्य जो है सिर्फ ये है कि इससे एक पंथ दो काज होगा कि अगर हम साइकिलिंग करेंगे तो हम फिजिकली फिट भी रहेंगे और साथ ही साथ हमारे ईंधन का बचत होगा, पर्यावरण को जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है, इसका जो है पालन हमारे विश्वविद्यालय में हो चुका है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि कम से कम एक दिन ऐसा, जैसे हम उपवास करते हैं इस तरीके से हम अपना संकल्प लें कि हम उस दिन वाहन का उपयोग नहीं करेंगे, या वाहन का उपयोग भी ऐसे वाहन का जिसमें पेट्रोल या डीजल लगता है और जिससे कि पर्यावरण को नुकसान होता है, हम उसमें कुछ मदद कर पाएंगे

0: निश्चित रूप से ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें हैं उनको कम करने में कुछ न कुछ जो है मदद मिलेगी। तो आप सभी लोगों को विश्व पर्यावरण के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में वाहनों से निकलने वाला धुआं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आओ हम सभी मिलकर प्रण लेते हैं कि अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल हमको करना है, एवं अपने साथी या सहयोगी लोग हैं, पारिवारिक जन हैं, उनको भी इसके लिए प्रेरित करना है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस पर हम सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का प्रयोग करना है, जिससे कि साइकिल के उपयोग के प्रति लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें एवं वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले पर्यावरण के नुकसान से बचा जा सके। धन्यवाद।
1: अगर हम मानसिक सुकून चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो हमें अपने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखना होगा। तो ये था हमारा आज का गुड मॉर्निंग खंडवा का ये अंक। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अब इस प्रोग्राम की होस्ट आपकी रेडियो दोस्त फिरदौस आपसे चाहती है इजाज़त। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग खंडवा,
2: गुड मॉर्निंग खंडवा।
3: अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग खंडवा। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात, आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह

0: आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
3: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्न

0: आता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
2: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

मोहन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू। भारतीय

0: उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत। निमाड़ी लोकगीत में पहले सुनिए ये साक्षरता गीत।

0: रंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: निमाड़ी लोकगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM बैंड 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी खंडवा है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, कार्यक्रम का पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे आप सभी श्रोता खंडवा रोड सनावत से, शेख मूसा, मोहसिन, शाहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर, मोइन शेख। घासपुरा खंडवा से अदुल, हमीद, खलीका, हबीब, सलमानी, रफीक, जावेद। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु खुराना। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश। ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बिंदु, सूरज कुमार ढाक से। ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदानगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू।

पंचशील नगर तालुका करजत से इकबाल अहमद बागबान, शमीम अहमद, रफत इमरान, रईस अखलाक अहमद फूल माली और भाई अहमद मुंबईकर। शिवकोटी कोठी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा ओम सेन, सपना धर्मेंद्र, मुकेश द्वारकाबाई और ऋषि सेन। इंदौर लिम्बोदी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषाबाई चौधरी। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हारपुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। डाबकी रोड अकुला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। बुल्ढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी साधना, सुमेध कुमार दामोदर। वरसिंगी बुल्ढाणा से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक दीपाली। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बुढ़ाना। आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा, कृष्णा। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी फाल्गुनी, बड़ाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिरा ताई। खांडवी बुल्ढाणा से दीपावली राम ढाणे, स्वराज राम ढाणे। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रोनक सेन। भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल और पूजा परिहार। नूर महल महसोल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहां, तलहत नाज फरहत, नाज रिफत जहां नाज, नुजहत शाजिया शाहीन, नाजिया नूरी। आप सभी सुनना चाहते हैं ये गीत।

चोरी चोरी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और लता मंगेशकर के स्वर में। शैलेंद्र ने गीत लिखा था और शंकर जयकिशन ने इसका संगीत तैयार किया था।

28 जनवरी 1937 को ढाका में जन्मी मशहूर पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी का निधन हो गया है। सुमन कल्याणपुर जी ने रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोसले, हेमंत कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, शमशाद बेगम और किशोर कुमार के साथ कई हिंदी फिल्मों में गाने गाए और सुनहरे युग के कई गीत हम आज तक सुनते हैं। इसी कड़ी में लीजिए, सुनिए सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी का ये युगल गीत।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में ये गीत अभी आपने सुना ब्रह्मचारी फिल्म से। इसे सुनना चाहा था दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा, अजय कुमार, पीरा बाजार झुमरी तलैया, गिरिडीह से शिवानी कुमार, प्रियंका सिंह, अभय कुमार, खदान कोठी बोरो पारा चौक बसबेरिया से मुन्नी देवी, जयप्रकाश, आयुषी, मनाली हिमाचल प्रदेश से हर्ष, विनय, चेतना और रोजस, चंडीगढ़ से शेफाली, सैफी, विमल और सतीश अनेजा, गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम प्रकाश, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, अंकिता और अनिकेत चौहान, बागबहरा बदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा और कौशल, नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिलना झा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाड़कर, श्रीमती सरिता गवहाड़कर, प्रियंका, एकांश, प्रिंस, प्रणीता, सिद्धांत, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहाड़कर, वैशाली और कुमारी ध्वनि, पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, आसमा खातून, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, असलम अंसारी, आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला, विजय, शुभम, पवन, संजीव, राज पैलेस मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार, प्रीति वर्मा, कार्तिक, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, मोटका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस कनिका, ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, ग्राम जा खोद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, योगेश कुमार, दीपक।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: फसा अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मनहर उदास का गाया उषा मंगेशकर का संगीतबद्ध किया, निदा फाजली का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे आप तो ऐसे न थे फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा आप सभी श्रोताओं ने। माफ कीजिए, उषा खन्ना का संगीत था। जिन श्रोताओं ने गीत सुनना चाहा उनके नाम हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से, पिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, अनारकली बाजार जगराव से नील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक, धर्मपुरी से शेख फहीम मोहम्मद, तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, साइमा, हसनैन और खुशी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह और सिटी दीवाना, बागबान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा, अहमद बागबान, इकबाल अखलाक, आमना आसमा, राबिया सदफ और उनके सभी परिवार गण, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हारपुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद इमरान, वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश रमेश गौड़ और शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलमानी,

0: मोहम्मद उमर कासमी, अय्यूब शेरी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल और प्रगति नाचानी, जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी, धनोरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, रसीद वारसी, डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और जसवी यादव, दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नजमुल होदा, एस एम जावेद, शगुफ्ता, ये हैं झारखंड के, बठिंडा रोड मंडी डबलावली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक परी और स्वाति प्रयाग चौधरी। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी मीत ये गीत समाप्त करने की अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: अभी आपके मीत ये गीत कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था। सुबह के 9 बजे हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनते हैं ये गीत। सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गीत है, नेहा कक्कर की आवाज।
1: हसदी फिरे ते नाल जचदी फिरे, जचदी फिरे ते नाल।

सन ऑफ सरदार टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज नेहा कक्कर की थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। दोस्तों आज है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी विश्व वैश्विक मातृ पितृ दिवस, हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का, ये अवसर है माता पिता के प्रेम त्याग और बच्चों के पालन पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जिनकी उंगली थामकर हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, वो हैं हमारे माता पिता, हमारे जीवन की पहली पाठशाला और पहले गुरु होते हैं। उनके प्यार दुलार और मार्गदर्शन से ही हमारा सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। आइए हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनका सहारा बने और हमेशा ये एहसास दिलाएं कि वे ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। माता पिता का सम्मान हर रोज किया जाता है, जीवन भर अपना कर्तव्य निभाई जाने वाली हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको ये गीत सुनवाते हैं।

तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत कृष्णा की आवाज में आप सुन रहे थे। इस गीत को राजशेखर ने लिखा था और कृष्णा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में अब गदर 2 फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाजों में गदर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं थे। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

0: वर्ल्ड मिल्क डे सिर्फ पोषण के लिए ही नहीं, बल्कि उन लाखों पशुपालकों, डेयरी कर्मियों और वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों के योगदान को भी सम्मान देने की ओर ये दिन याद दिलाता है, ध्यान दिलाता है, जिनके प्रयास से प्रतिदिन शुद्ध दूध हमारे घरों तक पहुंचता है। एक ग्लास दूध में किसान की मेहनत, पशुपालकों का समर्पण और उदारता और त्याग, साथ ही डेयरी व्यवस्था का अथक प्रयास भी इसमें समाहित होता है। विश्व दुग्ध दिवस पर आइए इस अमूल्य योगदान का सम्मान करें और संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन का संकल्प लें। और एक संदेश आपको और सुनाते हैं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाजों में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं।

सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाजों में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे स्वानंद किरकिरे ने लिखा था और अमित त्रिवेदी का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।

बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज के फनकार हैं सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर की ये विशेषता भी है और अभिशाप भी कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती है। कई बार बड़े बड़े दिग्गज भी धोखा खा जाते हैं सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की आवाज में फर्क करने में।

सरगम के अथाह सागर में डूबकर गीतों के सच्चे मोती तलाशने की धुन जिन्हें रही है, वे सुमन कल्याणपुर के गीतों के शौकीन जरूर रहे हैं। सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक अल्हड़पन है, शोखी है और चंचलता है, और है देसीपन जो हर श्रोता को अपनी ओर आकृष्ट करती है।

गीत के बोल में चाहे प्यार की गहराई हो या पश्चिमी धुन पर थिरकता शरारती गीत या फिर शास्त्रीय संगीत का लोच हो, हर तरह से खरी उतरती है उनकी आवाज और यही उनके गायन की विशेषता है।

कल्याणपुर के हिंदी फिल्मी गायन का सफर शुरू हुआ फिल्म मंगू से। बोल थे कोई पुकारे धीरे, जिसके संगीतकार थे मोहम्मद शफी। इसके पहले उन्होंने बहुत सारे मराठी गीत गाए थे। फिल्म मंगू से जब सुमन कल्याणपुर ने फिल्मी गीतों के विशाल आंगन में कदम रखा तो छत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी सीढ़ियां तलाशनी पड़ी, काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज उनकी आवाज को पसंद करने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। अपने

अपने विवाह के पूर्व सुमन हेमाड़ी के नाम से गाती थी। उनका जन्म 28 जनवरी सन 1937 को बंगाल के ढाका में हुआ था, लेकिन संगीत की विधिवत शिक्षा उन्होंने मुंबई में हासिल की। आइए सुने सुमन कल्याणपुर की गाई इकलौरी, जिसमें माँ की ममता है, दुलार है, स्नेह है और है सूरज की रश्मियों की तरह फैल जाने वाली रोशनी।

सुमन कल्याणपुर के गाए गीतों की ये खासियत है कि उनके गीत हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोगों के जुबां पर गुनगुनाए जाते हैं। प्रेम की गहराई में डूबा मन हो या किसी के विछोह में आकुल मन, किसी का इंतजार हो या किसी से मिलन की घड़ी, हर ऐसे वक्त में सुमन कल्याणपुर के गाए गीत उनका साथ निभाते हैं। हर ऐसे वक्त में उनकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं सुमन कल्याणपुर के गाए गीत।

अभी विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 10 बजने वाले हैं जिले की चिट्ठी। कुछ ही समय बाद हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये वह चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं इंदौर जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे ने और वाचन स्वर है अभिषेक कड़ियार का। पिछले एक महीने में जिले में क्या क्या खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आमजन तक किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सबका लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बात सबसे पहले इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। इस बड़े आयोजन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विदेशी मेहमानों के लिए प्रदेश की संस्कृति, कृषि उपलब्धियों और पर्यटन की झलक भी खासतौर पर दिखाई जाएगी। खेती की बात चली है तो किसानों के लिए भी एक उत्साहजनक खबर है। जिले में उन्नत तकनीक अपनाकर बेहतर उत्पादन और आय बढ़ाने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि अभियांत्रिकी से जुड़े चयनित किसानों को जिला स्तर पर 25,000 और विकासखंड स्तर पर 10,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिला रोजगार कार्यालय में बीते दिनों युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 91 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिला। वहीं आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 300 से अधिक पदों पर प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। रोजगार के साथ साथ युवाओं को सुरक्षा सेवाओं में अवसर दिलाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शुरू की गई शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत इंदौर में 200 चयनित विद्यार्थियों को सैन्य बल, पुलिस और होमगार्ड जैसी सेवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं की प्रतिभा को खेलों में निखारने की तैयारी भी शुरू हो गई है। छोटी बेटमा स्थित शासकीय राजा शंकर शाह विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स, हैंडबॉल और कुश्ती के लिए 200 सीटों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जून तक चलने वाली इस प्रक्रिया में 11 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र की। शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से 3 विषयों क्रिया शरीर, रचना शरीर और शालाक्य तंत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे आयुर्वेद शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में अब तक 15,000 से अधिक एक्सरे किए जा चुके हैं। टीबी की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव उपचार में इंदौर जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की एक मिसाल महू तहसील के आशापुरा गांव में देखने को मिल रही है। यहां 60 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आधुनिक और विशाल गौशाला विकसित की जा रही है। इस गौशाला में करीब 10,000 गायों के संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी इंदौर की चर्चा हो रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के 15 जिलों में 48,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 28,000 संयंत्र सिर्फ इंदौर महानगर क्षेत्र में ही स्थापित हुए हैं। आध्यात्म और पर्यटन के विकास के क्षेत्र

भी एक बड़ी घोषणा हुई है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में 17 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से श्री परशुराम श्रीकृष्ण लोक विकसित किया जाएगा। यह स्थान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके साथ ही गंभीर और अजनार नदियों के पुनर्जीवन की योजना भी तैयार की जाएगी। न्याय व्यवस्था को लोगों के और करीब लाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी सफल रहा। बीते दिनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 107 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 47 लाख रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। वहीं जिला उपभोक्ता आयोग में भी 57 मामलों का निपटारा कर 2 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। और अंत में बात करते हैं उस संस्था की जो दशकों से देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाती रही है। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। देश विदेश के श्रोताओं ने इस लाइव कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं और यादें साझा की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस गरिमामय समारोह का समापन हुआ। इंदौर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे इंदौर जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।

0: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। आप थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास

0: इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
1: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
0: जी।
1: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
0: जी।
1: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
0: जी।
1: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है
0: जी। प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
1: बिल्कुल।
0: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं?
1: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
0: जी।
1: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
0: जी,
1: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
0: जी।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
0: जी।
1: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
0: जी।
1: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
0: जी।
1: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
0: जी।
1: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
0: जी।
1: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
0: जी।
1: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
0: जी।
1: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
0: जी।
1: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का,

0: या विशेष आवश्यकताओं का जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें एनईपी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
1: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं
0: जी। देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIET की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता

0: से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी।
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो, टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी।
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें,
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से
1: जी
0: मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी। बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?

0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी। मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके। यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आकाशवाणी खंडवा से अभी प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग प्रसारित किया गया।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,

0: 001-4242
1: 8700142 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700041-4242 पर।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:34 और 40 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्राम लक्ष्मी।

मैनोनी ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम लेकर आज आपका साथ छे आपकी बहन प्रतिमा तो स्वीकार करो हमारी राम राम। मैनोनी आज हम बात करा आत्मरक्षा का बारा मा। आत्मरक्षा हमारा घर समाज और देश की आधी आबादी से जुड़ेल विषय छे। मैनोनी हम सभी का लेन आत्मरक्षा जरूरी छे। हम सभी का लेन आत्मरक्षा का कई महत्व छे। कई बार जब हम अपनी बहू बेटी न का घर से बाहर भेजांस तो हमारा मन में एक अनजानो सो डर रहे न। हम बार बार अपनी बच्ची न सी ईच कहता रहवांच कि समय पर पहुंची जाजो, फोन करता रह जो, अकेला मत जाजो। पन कदी हम न ही सोचो कि न भय को समाधान काई होएगा। मैनोनी आज हम देखी रहाज कि हमारी बहन चांद तक जाई रही, सीमा पर देश की रक्षा करी रही। ऐसा में जरूरी छे कि हम सभी बहन भी अपनी आत्मरक्षा स्वयं करा। आत्मरक्षा को मतलब कराटा सीखी करना मारामारी करनू नहीं छे, बल्कि समय आने पर अपनी स्वयं की रक्षा करनू छे। सरल शब्द न में जाना तो कोई भी अनहोनी या खतरा का समय पर स्वयं का सुरक्षित रखने की कलाज आत्मरक्षा रहे। आत्मरक्षा में अपना आस पास का खतरा न कर समझनू ना मानसिक रूप से मजबूत रहनू भी छे, न सही समय पर सही निर्णय लेनू भी छे। आत्मरक्षा स्वयं पर भरोसो रखने की ताकत आए जी स्थिति न सी डरनू नी बल्कि लड़नू सिखावज। आज का समय में आत्मरक्षा कई कारण न सी जरूरी छे। आत्मरक्षा हमका डर सी लड़नू सिखावज, न जब हम अपना आप की रक्षा करनू सीखी जावांस तो हमारा भीतर सी अकेला बाहर निकलना अरु आना जाना वाला संकट को डर निकली जाएज। आत्मरक्षा आपातकाल में हमारी रक्षा करज। स्वयं का भीतर आत्मरक्षा होना सी हमारा आत्मविश्वास में भी वृद्धि होएज, साथज हमारो मनोबल अरु साहस भी बढ़ज। आत्मरक्षा का अभ्यास सी शरीर मजबूत फुर्तीलो अरु लचीलो बनज। मैनोनी भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकार न का द्वारा भी महिला न की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना का लेन कई प्रकार का महत्वपूर्ण योजना न भी चलाई जा रही, जेमा सरकार को प्रयास महिला न का सिर्फ वित्तीय लाभ देनु नहीं बल्कि उनकी शिक्षा से लेना उद्यमिता और देश का नेतृत्व तक सभी कदम पर सक्षम अरु स्वतंत्र बनाउनु छे। मैनोनी आत्मरक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा को साधन नहीं है बल्कि एक मानसिक अरु सामाजिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण छे। अपना भीतर आत्मरक्षा को गुण होना सी हम कोई अप्रत्याशित हमला अरु हिंसा का समय में अपनी रक्षा करी सकांज। आत्मरक्षा स्थिति न सी डरना का बजाय तुरंत सही कदम उठाने की क्षमता का विकसित करज। अपनी रक्षा को हुनर होना सी बहना आत्मगौरव और स्वयं पर भरोसो बढ़ज। आज हमका कई बार अकेला यात्रा करनू पड़ज, जेमा रात बेरात बाहर जाना पर हमका डर रहेज। उ डर आत्मनिर्भरता

न आत्मरक्षा का गुण सी दूर हुई जाए। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण सी हमारो शरीर लचीलो बनज न हमारी शारीरिक ताकत भी बढ़ज। आत्मरक्षा का अभ्यास ही शारीरिक और मानसिक तनाव ख कम करी सकांज। आत्मरक्षा का कई प्रशिक्षण केंद्र रहे जेमा हम मार्शल आर्ट सी भी जुड़ी सकांज। पुलिस विभाग और एनजीओ नका द्वारा भी लघु अवधि की लेन लोकल वर्कशॉप नको आयोजन कियो जाए। आत्मरक्षा का लेन जरूरी छे। सतर्कता की चलन समय पर अपना आसपास का लोग अरु रास्ता न पर ध्यान रखा। कदी कोई अनजान व्यक्ति होए न ओख अपनी पूरी जानकारी नहीं देवा हाई। कदी हमारो मन कोई व्यक्ति ख लेना असुरक्षित महसूस कर तो उन्हीं जगह से तुरंत दूर जावा। आज समय छे कि हम झुकी ननी न डरी कर नहीं चला बल्कि पूरा आत्मविश्वास से चला। बहनोनी हम अपनी सुरक्षा का साथ साथ समय आना पर दूसरी बहन न कभी सुरक्षा करी सका। तब बहनोनी आप सभी इना गुण का जानो न अपना अंदर आत्मरक्षा को गुण विकसित कर जो। न बहनोनी आओ वसुना कांता जोशी को गायली कृष्ण भजन।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बहनोनी, आ अब सुना वार्ता, विषय छे महिलाओं में तनाव प्रबंधन। जानकारी दे रही मनोवैज्ञानिक डॉक्टर श्रवि अमरत्री।
4: मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शांत और संतुलित मन है। मेरी प्यारी बहनों, नमस्कार। आज का विषय आधुनिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है, महिलाओं में तनाव प्रबंधन। आज की महिला केवल घर संभालने वाली नहीं, बल्कि वह पूरे परिवार की भावनात्मक आधारशिला है, धुरी है। मनुस्मृति में भी यह लिखा है कि परिवार की प्रसन्नता स्त्री की प्रसन्नता से ही है। सुबह से रात तक अनेक भूमिकाएं वह निभाती है, माँ, पत्नी, बहू, बेटी।

कि वह पूरे परिवार की भावनात्मक आधारशिला है, धुरी है। मनुस्मृति में भी यह लिखा है कि परिवार की प्रसन्नता स्त्री की प्रसन्नता से ही है। सुबह से रात तक अनेक भूमिकाएं वह निभाती है, माँ, पत्नी, बहू, बेटी, कार्यकर्ता और सबसे बढ़कर एक संवेदनशील इंसान। लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार वह अपने मन और भावनाओं को अनदेखा कर देती है। धीरे धीरे यही मानसिक दबाव तनाव का रूप ले लेता है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी में तनाव को स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहा जाता है। जब जीवन की चुनौतियां हमारी मानसिक क्षमता से अधिक महसूस होने लगती हैं, तब हमारा मस्तिष्क और शरीर तनाव की स्थिति में आ जाता है। तनाव के समय में शरीर कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। लगातार कोर्टिसोल बढ़ने से थकना, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, हाई बीपी, चिंता और भावनात्मक असंतुलन बढ़ सकता है। महिलाओं में तनाव के कुछ प्रमुख कारण हैं। हर समय परफेक्ट बनने या आदर्श नारी बनने का जो दबाव है कि मैं सर्वश्रेष्ठ कर दूं, मैं अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट माँ बन के दिखाऊं, एक सबसे बेस्ट पत्नी बन के दिखाऊं, ये दबाव उस महिला को तनाव में डाल सकता है। परिवार की अपेक्षाएं, आर्थिक, सामाजिक चिंता, ये कुछ ऐसी विकृतियाँ हैं जो एक नारी के लिए बहुत ही ज़्यादा तनाव का कारण बन सकती हैं। स्वयं के लिए समय ना निकाल पाना, भावनाओं को दबाना, लगातार दूसरों की ज़रूरतों को स्वयं से ऊपर रखना, ये भी कुछ कारण तनाव के हो सकते हैं। मनोविज्ञान में इसे केयर गिवर बर्नआउट कहा जाता है। जब दूसरों की देखभाल करते करते महिला मानसिक रूप से थक जाती है। प्रिय बहनों, तनाव हमेशा बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी सोच से भी उत्पन्न होता है। यह स्थिति मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाती है। बहनों, आप कुछ बहुत सरल मनोवैज्ञानिक उपाय का उपयोग करके अपना दैनिक जीवन का तनाव कम कर सकती हैं। मेंटल ओवर स्टिमुलेशन से बचें, जैसे बार बार मोबाइल देखने से कभी एक खबर खुशी की आती है, अगले ही पल एक दुख की रील आती है, ये बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन को, आपके माइंड को ओवर स्टिमुलेट कर देता है। अत्यधिक व्यर्थ की बातें, जिन चीज़ों पर आपका कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। पॉज यानी ठहराव टेक्निक अपनाएं। जब ज़्यादा ही तनाव हो या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, तब तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। 5 सेकंड के लिए रुकें, गहरी सांस लें और तभी उत्तर दें। इमोशनल रेगुलेशन के जरिए अनेक विवादों को आप निपटा सकती हैं। मी टाइम यानी कि आपका अपना स्वयं का समय, उसको निकालने का प्रयास अवश्य करें। बहुत सी हमारे बीच में ऐसी हमारी बहनें होंगी जो स्वयं के लिए समय निकालने में अपराध बोध महसूस करती हैं। उन्हें लगता है जिस समय में मैं आराम से खुद बैठूंगी, उतनी देर में तो मैं बच्चे की अपने कोई मदद कर दूंगी, उसके लिए कुछ नाश्ता बना दूंगी, कोई प्रोजेक्ट में हाथ बटा दूंगी। ऐसा अपराध बोध उन्हें स्वयं के लिए समय निकालने से रोकता है। लेकिन आप याद रखें कि ये गिल्ट कंडीशनिंग है, ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। इससे स्वयं को बचाएं और स्वयं के लिए समय निकालें। हमेशा याद रखें कि थका हुआ मन कभी एक खुश परिवार नहीं बना सकता। रोज केवल 20 मिनट अपने लिए रखें। इन 20 मिनटों में कुछ बेसिक रिलैक्सेशन तकनीक, जैसे भजन सुनना, संगीत सुनना, पौधों या घर में पालतू जीव का ध्यान रखना, चाय पीना, आत्ममंथन करना, ये चीजें मानसिक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। मल्टीटास्किंग करने से बचें, यानी कि एक साथ बहुत सारे काम करने से बचें, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से स्वयं को बचाएं। ऐसा करने से दिमाग थकता है, मेंटल फटीग के कारण तनाव बहुत हद तक बढ़ जाता है। एक समय पर एक कार्य करें, अच्छे से करें, धैर्य से करें। अपनी भावनाएं व्यक्त करने से ना घबराएं। हमारे बीच अधिकांश बहनें अपना डर, चिंता, खुशी सब कुछ कहीं दबा लेती हैं और यही आगे चलकर एंजाइटी या डिप्रेशन में बदल सकता है। अपने विचार, अपनी भावनाएं साझा करने से ना डरें। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, बल्कि आपकी कोई एक सहेली या परिवार का एक सदस्य भी इसके लिए बहुत है।

0: तुलना करने से ज़रूर बचें। तुलना यानी कि कंपैरिजन, उसका 3 मंजिला मकान है, उसकी इतनी ज़मीन है, उसके बच्चे के इतने नंबर आए, उसके पास ऐसी गाड़ी, मेरे पास ऐसी, यह सब सोचकर आप सिर्फ कंपैरिजन एंजाइटी में स्वयं को डाल रही हैं। हर घर की अलग कहानी है, हर घर की अलग परिस्थिति है। हर महिला जैसी भी परिस्थिति हो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ अपने परिवार को देने का प्रयास करती है। प्रिय बहनों, याद रखिए, मानसिक स्वास्थ्य कोई फिजूल की बात नहीं बल्कि मूल आवश्यकता है। जैसे बुखार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अत्यधिक तनाव होने पर मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की सहायता लेने से संकोच ना करें। मदद मांगना या अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए बात करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक परिपक्वता का संकेत है। बहनों, कभी भी आप किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से यदि परामर्श लेती हैं तो वह पूरी तरह गोपनीय होता है। वह साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपकी जानकारी स्वयं तक ही सीमित रखते हैं। इसी के साथ बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पूरी तरीके से निःशुल्क टोल फ्री हेल्पलाइंस की शुरुआत की है। यह हेल्पलाइंस पूर्णतः गोपनीय हैं और 24 घंटे काम करती हैं। टेली मानस ऐसी ही भारत सरकार की एक पहल है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सबसे प्रमुख राष्ट्रीय मानसिक हेल्पलाइन ये है। टोल फ्री नंबर 1-800-891-4416। इस नंबर पर कॉल करके आप सीधे प्रशिक्षित काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से बात कर सकती हैं। यह हेल्पलाइन सेवा 24/7 खुली रहती है और हिंदी अंग्रेजी समेत 20 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अलावा किरण हेल्पलाइन, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन है जो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती है। तो बहनों, इन सब सुविधाओं का लाभ उठाइए और अपने मानसिक स्वास्थ्य का सदा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपका मन खुश होगा, मन स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगी, तभी आप अपने परिवार का भावनात्मक रूप से ध्यान रख पाएंगी। याद रखिए, खुश रहने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं बल्कि आपके मन का संतुलित होना आवश्यक है। मेरी प्यारी बहनों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मन शांत हो तो जीवन खिल जाता है, हर मुश्किल का रास्ता मिल जाता है। खुद को संभालना भी एक कला है, मुस्कुराती नारी से ही घर में उजाला है। तो प्यारी बहनों, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। चिंता, तनाव, ये सब कोई व्यर्थ की बातें नहीं बल्कि वास्तविक स्थिति है। ऐसे तनाव में जब भी आप स्वयं को महसूस करें, जब भी आपको लगे चीजें आपके बस से बाहर हो रही हैं, तो कुछ पल अपने लिए निकालिए, कुछ आत्ममंथन करिए, और अगर बिल्कुल भी अपने आप से संतुलन ना हो रहा हो तो किसी मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता को या किसी काउंसलर को दिखाने में, उनसे बात करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करिए। यही चीज़ें आगे चलकर आपके मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने में आपकी सहायता करेंगी। धन्यवाद।
1: मैनोनी, अभी हम वार्ता सुनी रहा था, विषय थो महिलाओं में तनाव प्रबंधन। जानकारी दे रही थी मनोवैज्ञानिक श्रवि अमरत्री। नैनोनी आओ चला पीनट चाट यानी कि मूंगफली चाट की ओर। बैनोनी, मूंगफली चाट बच्चा से लेकर न बड़ा तक सभी का स्वास्थ्य और स्वाद का लेन अच्छी रहे। ताप सभी अव जल्दी से डायरी न पेन उठावा, नैनी सामग्री का नोट करा। मूंगफली चाट बनाना का लेन आवश्यक सामग्री में 1 कप उबलेल सूखा भुनेल दाना, प्याज 1 छोटो बारीक कटेल, टमाटर 1 छोटो बारीक कटेल जेम ओका बीज अलग होए, खीरो यानी कि ककड़ी 1/2 कप बारीक टुकड़ा में कटेल, हरी मिर्च 1-2 स्वाद अनुसार बारीक कटेल, हरी धनिया 1 मुट्ठी बारीक कटेल, नींबू को रस 1 बड़ो चम्मच, चाट मसालो 1 छोटो चम्मच, भुनेल जीरो पाउडर 1/2 चम्मच, कालो नमक स्वाद का अनुसार ले सकांज, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटो चम्मच, आकर्षक रंग का लेन। बहनोनी, चाट बनाना का लेन सेव न पपड़ी सजावट का लेन भी ले सकांज। न वह मूंगफली चाट का बनाना की विधि की बात करा तो मूंगफली चाट बनाना का लेन

सबसे पहला मूंगफली का दाना नखा थोड़ा नमक का पानी में उबाला। कदी चाट कुरकुरी पसंद होए तो मूंगफली का दाना नखा बिना तेल का धीमी आंच में भुनी भी सकोज। फिर एक बड़ा बर्तन में तैयार मूंगफली का दाना डाला, एमा कटेल प्याज टमाटर और खीरो डाली कना अच्छी तरह मिलावा। फिर इना मिश्रण में बारीक कटेल हरी मिर्च, चना मसालो, भुनेल जीरो पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कालो नमक डाला। कालो नमक मूंगफली चाट का स्वाद में कई गुना बढ़ाई देज। न फिरी इना मिश्रण में ताजा नींबू को रस निचोड़ी करना अरु उपरसी हरी धनिया भी डाली सकांज। चाट परोसना का ठीक पहला चाट का ऊपर थोड़ी बारीक सेव न पपड़ी भी डाली सकांज। न लेव अव चाट तैयार छे। तो बहनों आप सभी इन्हीं मूंगफली चाट का जरूर बनावा। इस सेहत का लेन भी अच्छी रहे, जेम प्रोटीन की शक्ति का साथ साथ मसाला न को चटपटोपन रहे। बहनों कई बार हम का या हमारा घर का कोई सदस्य का मुंह में छाला हुई जाए तो आओ जाना मुंह का छाला न को घरेलू इलाज। बहनों मुंह का छाला नख ठीक करने का लेन नमक का पानी को कुल्लो करी सकाज। ये पानी मुंह का कीटाणु नख मारज न घाव का सुखावज। साथ ज हम छाला नकलें शहद का भी छाला पर 3 से 4 बार लगाई सकान। शहद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल को गुण रहे। साथ ज नारियल का तेल को उपयोग भी छाला नख ठीक करने का लेन करी सकान। बहनों कई बार हम देखाज कि हमारा घर में शक्कर का डब्बा में चीटी न लगी जाए जेका से हमको परेशान होनु पड़ज। तब बहनों शक्कर में चीटी न नहीं लगा एका लेन हमारा शक्कर का डिब्बा में 4 से 5 लौंग डाली देनु चाहिए। लौंग की महक सी चीटी न दूर चली जाए। साथ ज हम चीटी न नहीं लगा एका लेन दालचीनी को एक टुकड़ो भी शक्कर का डिब्बा में रखी सकाज। तेज पान भी चीटी न ख दूर करज। न बहनों हम सब जानाज कि न बहनों आ अवसुना स्नेहलता भटोरे को गायल ई गीत।

मनोनी अभी हमने स्नेहलता भटोरे को घायल नानी बाई को मायर सुनो। नैना लोकगीत का साथ कार्यक्रम को समय भी पूरा हो तो आज्ञा देव अपनी बहन प्रतिमा ख राम राम।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

फिल्म सावी का ये गाना आप सुन रहे थे। जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में रश्मि विराग के बोल थे और जावेद मोहसिन का संगीत था। और अब सुनवाते हैं मिताली सिंह का गाया हुआ ये गाना माधोलाल की वॉकिंग फिल्म से। सानिया असलम के बोल हैं और नायाब राजा का संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: रंग तरंग कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम राजकुमार रिजवी की आवाज में। बेनी सतमकर का संगीत है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

मिताली सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे कतील राजस्थानी का कलाम, और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गज़ल राजकुमार रिज़वी की आवाज़ में।

0: राजकुमार रिजवी की आवाज में भी आप सुन रहे थे डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया हुआ ये गाना।

आया मैं, दिल आया मैं बचा के पंजाब से। कितना प्यार देखो मुझको जना।

0: दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।
3: यादों के महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आपस की बात का गाना। सुमन कल्याणपुर के स्वर में अनजान के बोलों को संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।
4: कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे एक नहायत स्पेशल किस्म का बुके चाहिए।
4: स्पेशल बुके? लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए?
5: इससे आपको मतलब?
4: जी मुझसे तो नहीं, लेकिन फूलों का फूलों से मतलब है। आई मीन हर फूल हर जगह नहीं भेजा जा सकता।
5: जी
4: जी हाँ, रंग और खुशबू का अपना एक मिजाज होता है, उसका एक करेक्टर होता है। फूलों में भी सनाना और मर्दाना फूल हुआ करते हैं। अब देखिए ना, मर्दों को सनाना और औरतों को मर्दाना फूल भेज जाते।
5: समझ गए, ये बुके एक लड़के के लिए है।
4: ओह दैट्स फाइन। अच्छा भैया बताइए कि वो लड़का आपको क्या लगता है? देखते बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर वो भाई है तो फूल अलग होंगे और वो फ्रेंड है तो फूल दूसरे होंगे। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: सेवा के बारे में बात।

0: आंधी और तूफान, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फारूक कैसर के बोल थे और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। और अब ये संदेश और उसके बाद एक और गीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज।

0: अनजान का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म आपस की बात का ये गाना आपने सुना, आवाज सुमन कल्याणपुर की थी।
1: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: यह फिल्म अली बाबा और 40 चोर का गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ।

अंदाज फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा का गाया हुआ। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था, जिसे संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चालाक का ये गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है गणेश का।

फिल्म अनजाना का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा।

पपीहा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा बना

0: पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा पपीहा देखो देख।
1: सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गाना आपने सुना फिल्म फरियाद से। बोल केदार शर्मा के थे और संगीत था स्नेहल भाटकर का। और अब आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मेरी सूरत तेरी आंखें, फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र की शब्द रचना है और संगीत है सचिन देव परमन का।

यादों के महफिल कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं नूर महल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल सबा अफगानी के हैं और संगीत है जानी बाबू कव्वाल का।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की बात और इस कार्यक्रम के गीत होते हैं बहुत खास, और आज भी कुछ ऐसी ही बात है, ऐसा ही कार्यक्रम है। तो चलिए ना एक सुरीले सफर पर हमारे साथ। इस सुरीले सफर में आज की जो इबारत है वो हम बता देते हैं, खासतौर से उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी नहीं देखा है फेसबुक पर इस इबारत को। इबारत कुछ इस तरह से है, उनका प्यार नहीं बटता चाहे दुनिया एक बटा दो हो जाए। वो सिखाते हैं गगन में उड़ते मस्त पंछी की तरह जीना, रोते रोते हंसना, दिल की गिरह खोल कर बाहर से अंदर तक दुनिया को समझना। उनके होठों पर बड़ा नाम करेगा या राज करेगी जैसी दुआएं रहती हैं, मुड़ के ना देखो या चुनरी संभालो जैसी उनकी हिदायतें जिंदगी भर साथ रहती हैं, याद रहती हैं। याद आती हैं उनकी सुनाई हंसों की कहानी, और गुजरते जाते हैं दिन महीने साल, हम सीख जाते हैं साथी का साथ देना। खुश रंग हिना की खुशबू लेकर डोलती पवनिया से दिल का संदेश कहना, उनका हाथ लगते ही बिगड़ता काम बन गया है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? वैसे आखिरी लाइन तो एक हिंट थी आपको ये जानने के लिए कि देखिए आज आपने इस कार्यक्रम की क्या बातें होने वाली हैं उन्हें समझा है या नहीं, या ये इबारत की सोर इशारा कर रही है। और बेहद खुशी की बात है कि हमारे सभी श्रोताओं ने जल्दी से जल्दी इस थीम को पहचान लिया। हाँ, आज विश्व अभिभावक दिवस है और इसीलिए बातें हो रही हैं उन अभिभावकों की, माता पिता की, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ऐसा हमारे एक साथी कह रही हैं, सच कहूँ तो माँ पापा का प्यार ऐसा खजाना है जिसकी कीमत कभी नहीं लगाई जाती। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी माँ पापा का प्यार हमारे साथ खड़ा रहता है। उनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जीवन

कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। उनके जैसा चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ पापा का प्यार शब्दों में नहीं बल्कि उनकी हर चिंता, हर दुआ और हर त्याग में दिखाई देता है। क्या बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आज के कई गाने हम समझ गए हैं और वो गीत हम विविध भारती पर सुनते भी रहते हैं, पर बताएंगे नहीं। जो गीत सही होगा उस समय बता देंगे, सच ही कहेंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमारी प्यारी सी उद्घोषिका के साथ एक सखी भी हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अनमोल दोस्ती होती है ये, जब इस तरह से हम बात शुरू करते हैं और हम जो कहते हैं वो आप झट से समझ लेते हैं। हमारे साथियों ने बताया है कि वो तमाम गाने बताए हैं जिन पर आज की ये इबारत रची गई है, और कुछ साथियों ने ये भी कहा है कि सारे गाने तो इबारत में ही छुपे हैं और एक एक गाना उनको समझ में आ गया है। क्या बात है। तो भाई ये गाना आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज आपकी पसंद के सारे गाने आ रहे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश को बहुत ही सुंदर भावों से सजाया है और शब्दों के चित्रण में माता पिता के ममत्व की सुमधुर खुशबू को पसारा है। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। प्यार, ममता और अपनत्व का पूरा संसार आज रच दिया है। दो पंक्तियां साझा करूंगा, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, आते ही लबों पर मुस्कान और आंखों में नमी छा जाती है। वाह, क्या बात। एक और श्रोता कह रही हैं कि कहीं पढ़ा था बच्चे को माँ 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी बाहों में 3 साल और अपने हृदय में तब तक जब तक कि खुद उसकी मृत्यु ना हो जाए। पिता के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि बचपन से पिता से एक अव्यक्त दूरी अपने आप बन जाती है, मगर पिता का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला की तरह है। बच्चा समुद्र की गहराई में ना डूबने पाए, इसके लिए पिता तमाम जतन जीवन भर करते रहते हैं और उनकी छवि एक कड़क पिता के रूप में बच्चों के हृदय में दर्ज हो जाती है। मगर पिता के सीने में भी एक नाजुक दिल धड़कता है। मंगल नसीम की लिखी कुछ पंक्तियाँ यहाँ साझा कर रही हूँ। क्या सीरत, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। बहुत सुंदर। एक और संदेश है कि आज की भारत में माता पिता के प्यार की खुशबू महक रही है। वात्सल्य और सुसंस्कारों का संतुलित जीवन रस लेकर उनके बच्चे खुशी से फूले फले, ऐसी उनकी मनोकामना होती है। निस्वार्थ भाव से वो अपनी संतान को आधार और सुरक्षितता देते रहते हैं। उनके प्रेम की गहराई कभी मापी नहीं जाती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और मुझे लग रहा है कि आज इनकी पसंद बिल्कुल हमसे ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी बढ़ता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में संतान के साथ खड़ा रहता है। वे हमें जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना और सही राह पर चलना सिखाते हैं। उनकी दुआएं, सीख और हिदायतें उम्र भर हमारा संबल बनी रहती हैं। उनके स्नेहिल स्पर्श में ऐसा विश्वास होता है कि बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अनमोल छाया है जिनकी याद, सीख और प्रेम हर दिन हमारा मार्ग रोशन करते हैं। बहुत सुंदर लिखा आपने। और अब हम सुनवा रहे हैं ये गाना, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और हाँ आवाज़ें किनकी हैं।

बिल्कुल सही जवाब आ गया। फिल्म कालीचरण का गाना अनुराधा पौडवाल, कंचन और साथियों की आवाज़ें, और ये भी बता दिया हमारे श्रोताओं ने, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया है, प्रेमनाथ जी का नाम भी लिया है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि त्याग और समर्पण की सराहना, माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, ये दिन उनके इसी निस्वार्थ भाव को मान्यता देने के लिए है। प्रथम गुरु माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, वे ही बच्चे को संस्कार और जीवन जीने के सही मूल्य सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं, काफ़ी बड़ा सा लंबा सा मैसेज है, हम छोटा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अमूल्य छाया हैं जिनके स्नेह, त्याग और आशीर्वाद से हमारा जीवन संवरता है। उनका प्यार कभी नहीं बटता, उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उनका स्नेह किसी नदी की तरह होता है जो बिना किसी भेदभाव के निरंतर बहता रहता है। उनकी बातें, हिदायतें और स्नेह समय के साथ और भी अनमोल लगने लगते हैं। संसार में यदि निस्वार्थ प्रेम का कोई सबसे सुंदर रूप है तो वो माता पिता का प्रेम है। और आगे लिखते हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी नहीं बटता। वाकई एक संदेश है, आज का सुरीला सफर शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना है। महान ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर का देहांत, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, होम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना कलाकार को अभिवादन। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सुरीला सफर पूरा करना है। इनके लिए हमारा प्यार कम नहीं होगा, बटेगा नहीं। और फिर आगे इन्होंने गाने लिखे हैं, लेकिन हम बता दें कि आज जो जन्म तिथि है, आज है अभिनेत्री नरगिस की, और हम उन्हें याद भी करेंगे। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में आपने यादों की महफिल कार्यक्रम में कई गाने सुने, और सदाबहार नगमे भी आप सुनेंगे। आज का आज के फनकार भी आपने सुना था सुबह 9:30 पर, जो आधारित था सुमन कल्याणपुर पर। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि जो नायक है उनके हाथ में क्या है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने माता पिता के प्यार की बात की है। भाई कभी डांट भी तो पड़ी होगी या कभी अच्छी तरह से धुलाई भी हुई होगी, अगर याद हो, जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी, तो वो भी हमें बताएं।

से कयामत तक फिल्म का ये गाना उदित नारायण की आवाज में, और हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तुरंत बताया कि फिल्म में आमिर खान इलेक्ट्रिक गिटार लिए हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब, और इस सही जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भी हैं। एक श्रोता ने बताया है कि मेरी धुलाई 8वीं तक बहुत हुई है, खासकर तब जब गणित के सवाल नहीं बनते थे, पर जब 9वीं कक्षा में आई तो पापा ने एक दिन मेरे दोनों भाइयों और माँ को ख़ास तौर पर बोला था, अब इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता ना जब ऐसे कहा जाता है, लगता सच में हम बड़े हो गए हैं ना। एक श्रोता कह रहे हैं, माता पिता ही तो हर एक जीवन के मूल में हुआ करते हैं, और वे अपने वैश्विक परिवार को वटवृक्ष की तरह न केवल पालते पोसते हैं, उनके पालन पोषण से अभिषिक्त हृदय ही तो भली भांति ही नहीं अपितु सुहृद के साथ गाया करते हैं कि धरती मेरी, माता पिता आसमान।

जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जान। वह अपने गीत की पंक्ति जो है बड़ी सुंदरता से पिरो दी। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि भाई चाचा चाची भाई भाभी भी तो होते हैं अभिभावक। बिल्कुल सही, आपने मेरे मुँह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी कि बहुत बार बड़े भाई या बड़ी बहन बिल्कुल अभिभावक बनकर पालते पोसते हैं और बहुत सारी बातें उनसे साझा करते हैं और माता पिता से ज़्यादा करीब उनके हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो उनके बारे में भी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि जो हमने पहले पूछा था ना कि किस बात के लिए धुलाई हुई थी, एक श्रोता ने बताया। अगर आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मम्मी पापा की तो पिटाई भी बहुत प्यारी होती है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना इस बात से? संदेश मिला एक श्रोता का, कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए विविध भारती पर, तुम तो सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब सुरीला सफर का नज़ारा देखने मिला, तब से पंछी बनू उड़ता फिरूं विविध भारती के मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूं प्रसारण तरंगों पर, दिल की गिरह खोलकर चुप ना बैठूंगा मैं, क्योंकि यहां कोई नहीं है अजनबी, मुड़ मुड़ के ना देखो मुझे, तुम मेरे पास आओ, VBS के साथ साथ गुजर जाए हर दिन, दिन हर पल गिन गिन साथिया साथ निभाना, साथी मेरे विविध भारती के राह में छोड़ ना जाना। बहुत सुंदर। आज की इबारत यही इंगित कर रही है कि ज़िंदगी का सब कुछ सीखने व सिखाने वाले हमारे अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं। बेहद खूबसूरत इबारत है। आज विश्व अभिभावक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन के सभी प्रियजनों को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता एक बेहतर कल के निर्माता हैं। इस दुनिया का भविष्य उनके द्वारा प्रतिदिन हर पल निभाए जाने वाले कर्तव्यों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हम सभी पर अपने माता पिता की शुभकामनाएं आशीर्वाद सदैव बना रहे। पर अब एक गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम क्या है और ये कौन सी अभिनेत्री गा रही हैं।

0: हमारे साथियों ने बता दिया, जाहिदा हुसैन अभिनेत्री नरगिस की भांजी थी, अनोखी रात फिल्म का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। शैतानियों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो भाई, माँ बाप की, माता पिता की जो डांट होती है वो भी बड़ी मीठी होती है, और उस मीठी डांट को याद करते करते और ये संदेश लिखते हुए ज़रूर हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, वो मुस्कुरा रहे होंगे। लिखते हैं, हम 6 भाई 3 बहनों का लंबा परिवार है, मैं 7वीं नंबर पर हूँ, अतः बचपन में डांट मार आम बात थी, चाहे बड़े भाई से हो या माँ से। हाँ, पिताजी ने कभी नहीं मारा। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बात बचपन की है, पिताजी ने गणित में भाग के कुछ सवाल स्लेट पट्टी पर लिखकर हल करने को दिए। उस समय गणित कमजोर था, 2 झपटे ऐसे पड़े कि सारे सवाल मैंने हल कर दिए। तब से लेकर आज तक कभी भी गणित में फेल नहीं हुए। वाह, क्या बात है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में माँ की साड़ी पहन के खूब खेल कूद कर गंदी करके रख दी, और जब माँ ने 3-4 तमाचे लगाए तो साड़ी पहनने का सारा भूत उतर गया। ओहो। एक और श्रोता ने बताया है, माँ तो खैर बहुत जल्दी चली गई थी, हम भाई बहनों को तो हमारे पापा ने ही बड़ा किया है और उन्होंने कभी भी हमें नहीं डांटा। आज भी वो हम भाई बहनों के साथ ही सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, उनकी ज़रा भी तबीयत खराब होती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सच ऐसा ही होता है। एक और श्रोता ने बताया है कि शैतानियाँ तो बहुत होती थी, पर इन शैतानियों का सरताज भैया रहता था, बेचारा भैया को ही पड़ जाता था। माँ कभी किसी को नहीं मारती थी, माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती थी, उसके उस इमोशनल ब्लैकमेल के डर के मारे हम अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लेते थे। बोलती थी कि अगर तुमने झूठ बोला तो मेरे मुँह से खून निकल आएगा। पता नहीं कैसे माँ समझ जाती थी कि हम झूठ बोल रहे हैं और वो मुंह में कुछ लाल रंग का चीज डालकर दिखा देती थी कि मेरे मुंह से लाल खून जैसा कुछ है, और हम भाई बहन डर के मारे उसे पकड़ के रोने लगते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते थे। पिताजी गुस्सैल थे पर हम लड़कियों को कभी नहीं मारते थे। इसी जून में 2 साल पहले माँ भी चली गई। इन सब बातों को याद करके मन थोड़ा भावुक भी हो रहा है। बिल्कुल हो जाता है। एक और साथी बता रहे हैं कि हम लोग अपने पिताजी से बहुत डरते थे, उनका रौब घर में था, हमारी बुआ चाचा भी उनसे डरते थे, डांटने पर कभी भी उलट कर जवाब नहीं देते थे, माँ से हर तरह से बात कर लेते थे। हम लोगों की बहुत सी गलतियों के कारण हमारी माँ भी डांट खा जाती थी। अब माता पिता कोई नहीं है, अब कोई डांटने वाला नहीं है। सच ये बात बहुत कसकती है। एक श्रोता ने कहा है कि इबारत भावनापूर्ण पारिवारिक रिश्तों को चित्रित करती है और हमें बचपन के गलियारों की सैर कराती है। सही है, माता पिता और पारिवारिक संरक्षण ही शैशवकाल से उत्तरार्ध तक बौद्धिक शारीरिक नैतिक विकास में सहायक होता है। पुराने काल के संयुक्त परिवार बहुमुखी

विकास का मुख्य कारक होता था, जहां चाचा चाची ताऊ ताई बुआ सभी के सानिध्य में बचपन गुजरता था। अब एकाकी परिवार का चलन और एक या दो बच्चों में सीमित परिवार रह गया है। भविष्य में मौसा मौसी बुआ शब्द शब्दकोश से लुप्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बहुत भावुक विषय इबारत है। हाँ है, तो बहुत दिल को छूने वाली बात। तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं। बताइए कि आवाज़ किनकी है और संगीतकार कौन है।

जवाब आया, हमारे श्रोताओं ने बताया। अंधा कानून फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। और संदेश जब आए हैं तो पिटाई की बातें भी आई हैं। हमारे एक श्रोता ने कह रही हैं कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को मारते नहीं, प्यार से समझाते हैं। भाई हम लोग तो बिना मार खाए समझते ही नहीं थे। नई पीढ़ी को ये बात संभवतः अजीब ही लगे, पर इतनी मार डांट के बाद भी प्यार भी तो सबसे अधिक करते हैं। माँ पिता जैसा और कोई नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता कह रही है कि शादी के बाद माता पिता के साथ सास ससुर भी

हमारे अभिभावक होते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम बोला जाता है। तो आप बताइए ना, कुछ अगर आपके पास कोई अनुभव हो या उनसे जुड़ी कोई बात हो, उनके प्यार का कोई खास पल आपने अगर जिया हो तो उसे हमारे साथ भी साझा करिए। एक संदेश में कहा है कि 5वीं कक्षा में एक बार स्कूल से छुट्टी होते ही सहेली के घर चले गए थे। उस समय इस बात का अनुमान नहीं था कि घर पे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता बढ़ने पर पापा जी स्कूल पहुंचे तो पता चला सब बच्चे चले गए हैं। 2 घंटे बाद जब घर पहुंचे तो माँ का गुस्सा पिटाई के रूप में मिला। थोड़ी देर बाद पापा जी भी घर आए। उन्होंने प्यार से समझाया कि पहले घर आओ फिर बता कर जाओ। ऐसा खट्टा मीठा अनुभव रहा जो अब तक याद है। सच में वो जो धक धक होती है जब पिटाई होने वाली होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, और पिटने के बाद जब प्यार मिलता है और जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है वो बड़ी ही प्यारी होती है। एक श्रोता कह रही है कि हमारी पिटाई तो नहीं हुई क्योंकि हम तो दूसरों को मारते या डांटते देखकर ही रो देते थे। जब कभी पापा हमारे छोटे भाई को उसकी गलती के लिए मारते थे हम रो देते थे। तब बहुत छोटे थे तो पापा कहते थे अब तुम्हारी वजह से इसे डांट भी नहीं सकते। और कभी कभी जब हम शिकायत करते कि इसने रेडियो फेंक दिया, वो खराब हो गया, तो पापा कहते तुम बताओ हम क्या करें। एक श्रोता ने लिखा है कि मायके में माता पिता का साथ एक बेटी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक संबल और सुरक्षा कवच होता है। ये वो सुरक्षित कोना है जहाँ बिना किसी शर्त के प्रेम, निस्वार्थ सहयोग और बचपन जैसी बेफिक्री मिलती है। मायके में माता पिता के सानिध्य के मुख्य पहलू विवाह के बाद जीवन के हर उतार चढ़ाव में माता पिता की मौजूदगी एक ढाल की तरह काम करती है। सही बात है, उनके पास बिताया गया समय मानसिक शांति और ऊर्जा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने कहा है कि इंसान को पक्षियों की तरह उन्मुक्त होकर जीने, वर्तमान में रहने और प्रकृति के करीब रहने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पक्षी कल की चिंता में नहीं जीते, वे आज के हर पल का आनंद लेते हैं। इसलिए इंसान भी भविष्य के तनाव को कम करने के लिए वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। पक्षियों ने कभी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं दिया, वो तो सिर्फ अपने बच्चों को उड़ने की कला सिखाते हैं। तनाव मुक्त रहने और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का नज़रिया पक्षियों की तरह ही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। गाने को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अभिनेता कौन है।

फिल्म रात और दिन का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब के लिए बेहद बेहद ढेर सारा शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बता दिया, तमाम श्रोताओं ने बताया कि प्रदीप कुमार और फिरोज खान इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नजर आए थे। और अब संदेशों की बात हम करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मम्मी पापा घर में छुपा कर रख देते हैं, बाद में देते हैं, हमारे ही लिए रखते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ ख़जाना ढूंढना उस समय बहुत एडवेंचरस लगता है, बड़ा रोमांचकारी लगता है, और कई बार वो ढूंढ भी लिया जाता है, और ढूंढने के बाद जब पता लगता है तो क्या होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें ज़रूर बताएँ। एक श्रोता लिखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मार के डर से ही डरें, हमारे मम्मी पापा आंखों से डरा देते थे। जी हाँ, ये आंखों का अनुशासन भी गजब का होता था। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बाबूजी हम लोगों को जूते डंडा से पीट देते यदि उनके सामने आवाज़ वाला खेलते थे, पर माँ गलतियों पर झाड़ू से मारती थी, पढ़ने को हमेशा बोलती थी, इसलिए आज हम भी अच्छे जॉब में हैं। बाबूजी किताब के लिए हमेशा आगे रहते थे, कलाकार हैं, बाबूजी दोनों हाथों से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक और संदेश में बताया है कि बचपन में माँ बड़े भाई मास्टर जी से मार खाने और उससे बचने के लिए दूर दौड़ कर भागने का आनंद ही अलग था। और एक संदेश है कि हमारी पीढ़ी वो थी, माता पिता की मार खा कर रोते थे, इतना रोते थे कि चुप कराने के लिए भी मार खाने के बाद चुप होते थे। क्या बात है। इन बातों के साथ चेहरे पर आप सभी के मुस्कान भी आती जा रही है। और एक संदेश में कहा है कि माता पिता बच्चे को प्यार, संस्कार और सुरक्षा देकर पालते हैं, जबकि सास ससुर का रिश्ता हमें परिस्थितियों का सामना करना, समझौता करना और एक नई सामाजिक दुनिया में अपनी पहचान बनाना सिखाता है। हर परिवार और परिस्थिति अलग होती है, कई बार सास ससुर का अनुभव और सीख जीवन में मजबूती लाते हैं, तो कभी उनके साथ का संघर्ष व्यक्ति को आत्मनिर्भर और साहसी बना देता है। एक श्रोता ने बताया है कि हम जब मुंबई में रहते थे, फोर्थ क्लास में था, तो एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, मेन रोड क्रॉस कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और कार टैक्सी ने मुझे टक्कर मार दी, मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो टैक्सी ड्राइवर अंकल जी बहुत डरे हुए थे, वैसे गलती मेरी थी, दूसरे लोगों ने मुझसे पूछा कि घर कहाँ है, हम छोड़ दें, मैं कहने लगा अंकल मुझे छोड़ने मत चलो प्लीज़, मम्मी बहुत डांटेगी और पिटाई होगी, मैं चला जाऊँगा। फिर भी ड्राइवर अंकल छोड़ने चले, परंतु पूज्य माता जी को घटना का पता चला तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और खुद ही रोने लगी, कहीं मुझे ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं। ये होता है माँ का प्यार, और मैं डर रहा था। तो अब वो खजाने वाली बात अगर याद आ रही हो तो जरूर बताएं, और बताएं कि इस फिल्म के गीतकार संगीतकार कौन हैं।

0: मुड़मुड़के मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के।
1: जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है।

फिल्म श्री 420 के इस गाने के लिए सही जवाब आ गया। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। आशा भोसले और मन्ना डे के साथ साथियों की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। रात और दिन फिल्म का जो गाना आपने इससे पहले सुना था उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने बताया कि वोल्स धुन पर विशेष आधारित नरगिस जी और फिरोज खान, रात और दिन शंकर जयकिशन जी का संगीत, अकॉर्डियन खूबसूरत और तबले का

खास चलन। और बहुत सारे श्रोता बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आज तो मेरे भेजे हुए बहुत सारे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, है ना, खुशी की बात। एक श्रोता ने बताया कि मेरे बेटे का विवाह 9 साल पहले हुआ है। कभी सास और बहू में कंकस नहीं होता, माँ बेटी की तरह सहृदय भाव से रहते हैं। ये भी जीवन का आनंद है, छोटी बातों पर कभी छोटा मन नहीं करना चाहिए। झगड़े का कारण एक दूसरे के प्रति कटु वचन से अभाव बढ़ता है। एक संदेश में कहा गया है कि बच्चों के जीवन के पहले गुरु माता पिता होते हैं, जो अच्छे बुरे की परख से अवगत कराते हैं। बच्चों पर अपने माता पिता के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है, लेकिन सामाजिक तौर तरीके सीखने की शुरुआत अपने परिवार से ही होती है, जहाँ माँ के आंचल की छांव और पिता के प्यार से बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।

आज की एक और संदेश में कहा है कि आज की इबारत की खास बात यह है कि गीतों को लेकर इसमें कुछ भी दबा छुपा सस्पेंस नहीं है। इबारत पढ़कर साफ साफ पता लग रहा है कौन कौन से सदाबहार सुपरहिट गीत बजने वाले हैं। कुल मिलाकर बहुत सरल और आसान समझ में आने वाली इबारत है। वैसे कुछ सस्पेंस हो तो और मज़ा है। तो चलिए, आप सबको माता पिता दिवस की बहुत शुभकामनाएँ और ढेरों बधाइयाँ। तो अब अगला गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थीं।

चली जाए, मारना दे टंक, नजर कोई हाँ।

फिल्म बहारों के सपने का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में आपने सुना। राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सही जवाब आ गया। आशा पारेख और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। संदेश मिला है कि हमारी श्रोता ने बताया है कि माँ से तो नहीं डर लगता था, पिता से बहुत डरते थे। कड़क स्वभाव वाले और शिष्ट पालन के आग्रही थे। सत्य की राह पर खुद चलते थे, हमें भी सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। आज माता पिता दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से हम सुखी हैं। और बचपन की यादें ताज़ा हुई, मुड़ मुड़ के न देख गाना सुनकर हमारी एक श्रोता की क्या बात है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका पूरे घर में रुतबा चलता था। हम बच्चों को भी बहुत डर लगता था, लेकिन थे वो बहुत विकासवादी। आज से 70 साल पहले उन्होंने हमारी बुआ जी को स्कूल भेजा था। वो गांव से इकलौती थी स्कूल जाने वाली। क्या बात है, नतमस्तक हो जाते हैं हम ऐसे बुजुर्गों के सामने जो हमें विकासवादी सोच की तरफ के अपना दिखाते हैं कि विकासवादी सोच से क्या क्या बदलाव आ सकता है। और अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, गाने को सुनिए और प्रमुख कलाकारों के नाम आपको बताने हैं, साथ ही बताइए गीतकार और संगीतकार कौन है।

खजाना ढूंढने की बात को लेकर हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक बार हमारे नाना जी जब घर आए तो हम बच्चों के लिए टॉफी का पैक लेकर आए। माँ ने उसको छुपा कर रख दिया। हम सबका ध्यान उस पर लगा था। बहुत जतन किए गए पर सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन माँ हर बच्चे को उनके अच्छे काम के लिए जब उपहार स्वरूप टॉफी देती तो मन प्रसन्न हो जाता था।

फिल्म अवतार का गाना राजेश खन्ना, शबाना आजमी प्रमुख भूमिकाओं में थे। आनंद बख्शी ने गीत लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया था, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है तो कुछ संदेश जल्दी से। ना कोई दौलत ना कोई ख़जाना चाहिए, बस माता पिता का प्यार पुराना चाहिए। सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जीवन में जब उनका आशीर्वाद सिरहाना चाहिए। क्या बात है। दूध दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक साथी कह रहे हैं कि रोज सुबह आधा लीटर दूध केसर डालकर पीजिए और 5 किलोमीटर लंबी यात्रा कीजिए। ओहो। एक और श्रोता ने कहा है कि हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर संदेशों के लिए। हाँ, समय की कमी के चलते हम बहुत से संदेश नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर संदेश हैं और इन्हीं संदेशों के बीच में हमने ढूंढ लिया है प्यार और माता पिता का वो समर्पण और त्याग। तो अब इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। डीजे राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की।

आज है विश्व दूध दिवस। दूध की उपयोगिता और महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिन दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में मनाया जाता है। दूध के विषय पर सोचना शुरू करते ही यकायक मैथिली शरण गुप्त की रचना याद आती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, है आंचल में दूध और आंखों में पानी। भले ही साथियों आज नारी अबला नहीं बल्कि सबला है, लेकिन ये भी तो सच है कि नारी हर दुख हर दर्द को पीकर पूरे घर को समृद्ध करती है। अपने रक्त को दूध में परिवर्तित कर एक माँ अपने संतान को पिलाती है, उसे जीवन दान देती है। तुम

हालांकि 1 जून यानी कि आज के दिन विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, पर भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाँ, वही कुरियन साहब जिन्होंने भारत में सफेद क्रांति ला दी थी अपने ऑपरेशन फ्लड के नाम से, यानी कि दुग्ध विकास मिशन के माध्यम से। इस क्रांति ने केवल देश भर में दूध की उपलब्धता को आशातीत रूप से बढ़ावा ही नहीं, बल्कि बच्चों में कुपोषण को भी कम कर दिया और साथ ही साथ लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दिया।

आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए दिन में एक गिलास दूध भी किसी विलास से कम नहीं। सरकार की तरफ से कुपोषण के खिलाफ कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद सजग नहीं होंगे आखिर कौन सा कदम सफल हो सकता है। हम जागरूक रहे और कई कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा सबसे बेहतर योगदान दे। हमारे लिए जितना भी संभव हो हम उन कुपोषित बच्चों को दूध पिलाकर उनका कुपोषण दूर करने में अपना योगदान दें।

0: कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती, नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती, नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे मार दे, मेरे अंदर जो अरबों जीव है उन सबको खत्म कर दे।
1: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार वर्तमान न्यायाधीश विवेक रुसिया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बदलाव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति होने के कारण हुआ है। नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रुसिया मूल रूप से जबलपुर के ही रहने वाले हैं। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 7वें दिन कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहा, इससे तापमान में भी कमी आई है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। शाजापुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में सबसे कम 34.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी और तपती धूप से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और ओली गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययनरत और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की कल आगरमालवा में बैठक आयोजित की गई। प्रशासन आपके द्वार अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के दूरस्थ ग्राम कामती में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर ने जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था की निगरानी के लिए वार्डों में निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुंचे। शहर में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। खंडवा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 290 लीटर शराब और बियर जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमरीका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफीन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये

0: 188,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होगी। मुंबई में 43.50 रुपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपये होगी। कोलकाता में 53.50 रुपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपये होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल

0: मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

अपनी सुरीली आवाज की खुशबू से तमाम यादगार गीतों को महकाने वाली सुमन कल्याणपुर की यह आवाज, साथ में मोहम्मद रफी, बेटी बेटे फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, भरत व्यास की रचना है और सतीश भाटिया का संगीत।

चांद और सूरज फिल्म का गाना आपने सुना, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में, शैलेंद्र की रचना थी और सलिल चौधरी का संगीत। इन सुंदर गीतों के साथ मन का जला दीप सदैव प्रकाश बिखेरता रहता है। फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी कल मुरझा गया, लेकिन उनकी आवाज़ की कशिश हमेशा दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रोशन की तर्ज़।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जब से तुम्हें देखा है फिल्म का गाना, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से संवारा है दत्ताराम ने।

सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, रॉबिन बनर्जी का संगीत है, आवाज़ है सुमन कल्याणपुर की।

हसरत जयपुरी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था जी चाहता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहब्बत इसको कहते हैं। यह है फिल्म का नाम, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।

0: आँखों की बुझा लूं तो चले जाएगा ठहरिए
1: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए कैसी हैं मंजरी जी आप?
2: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी
1: हूँ। हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा और फ्रेश लग रही हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
2: गीत संगीत की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हो आप गीत सुन लीजिए आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ, लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
2: बिल्कुल
1: है ना।
2: बिल्कुल वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छी अच्छे गायक गायिका चले जाते हैं तो उनके ना चाहिए उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती है, दिल भर आता है।
1: बिल्कुल। कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें जब हमारी जिंदगी से, विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते। और हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी।
2: नहीं, वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं। और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए, वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं।
1: और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है उनके गाए गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है।
2: बिल्कुल
1: ऐसा महसूस होता है,
2: है
1: ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ गाया
2: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था। बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी और जो आज हमारे बीच नहीं है तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और हमारी सखी ने भी एक
1: कुछ लिखा है, बताइए हमारी सखी ने क्या लिखा है।
2: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है। आज 89 उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याण

0: उनका आज निधन हो गया है और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, हालांकि शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज़ दी
1: बिल्कुल। और उनकी आवाज़ हमने जन जन तक पहुँचाई रेडियो के माध्यम से, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियां और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मुंगौड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी।

0: सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

0: आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधु पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधु को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहली कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
2: तो माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
1: तो गाली क्यों देते हो?
2: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
1: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
2: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
1: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
2: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
1: सभी को होता है, मुझे भी है।
2: अपने को अभागिनी समझती हो?
1: हूँ ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
2: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
1: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे

0: सुना दरवाजे पर ही बैठा है।
1: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
2: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जॉब हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी, वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
3: यहां की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
4: अच्छा,
3: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। ना कोई लड़ाई, ना बात, ना चीत। रात को औरत न जाने कहाँ चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है, कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
1: गहने बनवाता था कि नहीं?
3: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
1: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
2: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
4: चौधरी अभी मुझे एक सिपाही मिला था,

0: हमारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है?
1: हाँ, है तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
0: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
1: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
0: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
2: अच्छा,
0: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोच कर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है, फटकार बता दी।
3: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों दत्ते रे लालची?
0: 200 रुपए नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
4: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा
1: अब क्या करूं, जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं। नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं, वहां तो गहनों से प्रेम है।
4: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी

0: श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
2: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
5: हाँ तो मंजरी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
6: बिल्कुल मिलने वाले हैं।
5: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
6: और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
5: शुभकामनाएं
6: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिल के एक समय पे इकट्ठे होंगे।
5: हाँ तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खास तौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर
6: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे बर्थडे मनाने।
5: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है जी। और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के आसपास होते हैं ना, तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आँख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए
1: और
0: ना?
1: हाँ, उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए पसंद का खाना बना सकते हैं वो बनाए, उपहार चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमारी पहली पाठशाला होते हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं, और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और बच्चे की सफलता के पीछे उसके

0: अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना।
0: और उसका कारण भी है
1: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना। तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कहकर हमने इतिश्री कर दी,
0: नहीं
1: ये वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो अगर बच्चे की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
1: पता ही नहीं चलता था।
0: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए नियम अनुशासन सिखाने की, तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी, आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहाँ तक है एकल परिवार हो गए हैं। और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है, मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे। वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने। और होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं।
0: और देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना। दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी,
1: बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सपने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ, यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही कभी नहीं बढ़ता, जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो, पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो। ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले
0: जी।

0: हाँ,
1: तो देखिए अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही।

0: कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबीयत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, नहीं दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: कुछ समय तक तबीयत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
0: हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए,
1: नहीं होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है, इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता। और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
0: अरे, हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
1: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है। बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, हाँ। आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को दिला सकते हैं।
0: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे है ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मुंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगौड़ी एक कप, आलू चाहिए
0: आधा कप
1: आलू, 2 लंबे पतले कटे हुए मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें, उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आँच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होते हैं और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं सखियाँ, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीज़ें ले सकते हैं कम या ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊँगी हो सकता है आप उसे ज़्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें, एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से

0: 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी की दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें पांच छह, और इसको गर्म गर्म तेल में तलें। और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना, वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: स्वाद लें। गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुगे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
3: जाओ जाओ जाओ किसी वैद को बुलाओ।
0: सेहत नामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
4: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
4: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
4: हाँ जी,
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
4: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
4: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह, जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा,
4: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही, ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें है, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
4: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स का काम है।
0: जी
4: ठीक है, इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
0: पेट में।
4: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
0: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
4: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग

0: मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए
1: जी।
0: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है। तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
1: छोटे बच्चों के लिए,
0: छोटे बच्चों के लिए एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0-3 इयर्स मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो,
1: बिल्कुल
0: उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
1: ये हम सभी के मामले में करें।
0: हाँ,
1: चाहे बच्चे हो,
0: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े
0: घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले तब तक हम लोग चेंज नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए, तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा। लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग नहीं होता है, बाहर इजिली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे।

0: वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
1: ठीक है,
0: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
1: बिल्कुल,
0: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
1: ओके,
0: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते हैं।
1: लेकिन नस तक
0: अभी तक पहुंचा नहीं है
1: जी।
0: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
1: जिसकी हमने चर्चा की।
0: एग्जैक्टली,
1: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
0: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
1: हाँ।
0: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
1: ये बहुत खतरनाक है।
0: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
1: अच्छा।
0: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता है, हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
1: सेम बात
0: यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है, ये बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली, नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
1: जी।
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं, वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं, हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं

0: ये गाना हमने सुना हो, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है, नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है एनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है

0: कड़क चीजों को मजे से, अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
1: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा है
0: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है, मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगे, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स, ये बना है ये खाना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए,
0: ये तो खाना ही पड़ेगा।
1: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
0: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है।
1: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
0: ओहो,
1: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो। मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
0: बहुत सही है, बहुत सही है।
1: तो ये जो दुलार है ना,
0: ये बहुत नुकसानदेह है।
1: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
1: श्योरली। तो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
0: क्या बात है महबूबा,
1: दांतों में दर्द होता है तो नैनों से तो सावन बरसना ही है।
0: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: Yes.
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: Yes.
1: इसके लिए रूट कैनल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी.
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
0: अरे,
1: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो।
1: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
0: बिल्कुल।
1: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
0: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
1: एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
0: हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ।
1: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 pascal, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज।
0: ये बहुत ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया।

0: यस
1: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल, जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें दो तीन बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरिया अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने, फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है, जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी दो या तीन जड़ें होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है,
0: बिल्कुल
1: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा पा रहा हूं,
0: इसके बिना भी चल सकता है,
1: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी डेढ़ गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर में है, एक डेढ़ दो महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था डेढ़ दो महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
0: अच्छा,
1: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है, या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन।
0: ओके,
1: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
0: तो वो
1: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
0: ओके,
1: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
0: इसलिए डॉक्टर के पास जितनी जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
1: सही बात है, और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है एक मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा है वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
0: ठीक बात है,
1: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
1: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
0: जी,
1: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहाँ पे हम लोग गा लेते हैं।
0: तो हमारे लिए भी गाइए।
1: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
0: जी।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है, तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है। परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के। क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं, दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है।
0: ओके।
1: उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है। बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत, या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
0: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है। अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है।
0: ओके।
1: जिसको अलाइनर्स बोला जाता है, तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है। और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
0: जी,
1: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के। फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है, तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में, अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये

0: निकालने पहनने वाली चीज है। इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना। वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है। वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है। तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग, पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनस से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है। तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनस से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनस पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है।
1: ओके,
0: सेम ही आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है। उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है।
1: ओके,
0: तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है।
0: हाँ जी,
1: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
0: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की।
1: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
0: दांतों की बीमारी नहीं है।
1: ओहो,
0: ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए।
1: ओके,
0: अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे डेढ़ गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सपोर्ट जाएगा,
1: यस,
0: तब दांत हिलेगा।
1: तो हड्डी मामला है।
0: एग्जैक्टली, वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी चार स्टेजेस है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है। उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं, स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो। या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मली लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं।
1: ओके,
0: तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस।
1: ओके,
0: दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट।
1: ओके,
0: वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड वन वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
1: हाँ, ये थोड़ा विजिबल साइन है,
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है,
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो। अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
1: हाँ, लोग आपसे दूर जाने लगते हैं,
0: हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई

0: आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से,
1: हाँ जी,
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के 4 दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना,
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है,
1: बिल्कुल,
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस,
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो तो करोड़ों में जाती है, कई 100 करोड़ों में जाती है।
1: यस,
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं, फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
0: चीजें,
1: तंबाकू,
0: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की,
0: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
1: अरे अरे,
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ, और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है।
1: बिल्कुल,
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो।
1: बिल्कुल,
0: ये सजेशन मैं यहाँ दूंगा।
1: इसी बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे।
1: वाह, पर हम वफा करना सीख,
0: क्योंकि आपने करना सीख।
1: एग्जैक्टली, क्या बात है, सुनते।

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमिडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके,

0: पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन दांत
1: लेवल में लाए जाते
0: हैं। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
1: करेक्ट,
0: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
1: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
0: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है, आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
1: यस,
0: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
1: yes.
0: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
1: बहुत जल्दी होने लगा ये,
0: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
1: बाकायदा,
0: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
1: और वो महंगी चीज है।
0: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे, ऑब्वियसली बात है वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का,
1: एक दांत का।
0: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 टू 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का।
1: बहुत कम है,
0: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110 से 115 तक।
1: इक्विवेलेंट है,
0: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो।
1: पर इम्प्लांट बहुत महंगा होता
0: है, इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
1: जी,
0: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
1: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
0: Exactly.
1: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
0: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, खुल के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच सर।
2: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ, खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

कुछ कहना नहीं होता है, ना ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था, लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात

कुछ कहना नहीं होता है, ना ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता, सब कुछ होंठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सा पुल है जो एहसास बनाती है।

0: आपको सुनवाते हैं अप्रैल फूल इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत।
1: ईछे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन। इस समय आप सुनेंगे निमाड़ी लोकगीत। आज आप सुन रहे हैं ओम प्रकाश बामने और साथियों के गाए हुए निमाड़ी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोकगीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। आज के इस कार्यक्रम में आपको अपनी रेडियो दोस्त लक्ष्मी ठाकुर का स्नेहिल नमस्कार। दोस्तों, क्रम की शुरुआत से पहले हम जान लेते हैं आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अंत तक आप बने रहे हमारे साथ और एंजॉय करें युववाणी। दोस्तों, आज जून की पहली तारीख है और पहली जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 में की थी। इस दिवस को मनाने के कई उद्देश्य हैं, जिनमें दूध को ग्लोबल फूड के तौर पर पहचान दिलाना, डेयरी सेक्टर के फायदे बताना और दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इस दिन हमारे देश में भी कई आयोजन किए जाते हैं। दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा आज का क्रम, कुछ बातें कुछ गीत। आप सभी ने कभी न कभी रेल यात्राएं की ही होंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि रेल यात्राएं कुछ लोगों के जीवन का हिस्सा ही हो। कभी छोटे छोटे स्टेशनों से, कभी जंक्शन तो कभी सेंट्रल या टर्मिनल्स तक हम इन ट्रेनों के माध्यम से पहुंचते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि स्टेशन, जंक्शन, सेंट्रल या टर्मिनल होते क्या हैं? तो आज हम जानेंगे इन सभी के बारे में, लेकिन पहले सुनेंगे एक गीत।

दोस्तों, जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो सबसे ज्यादा बार जो हम सोचते हैं वो होता है कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। तो पहले हम ये जानते हैं कि आखिर स्टेशन क्या होते हैं। स्टेशन वो होते हैं जहां सिर्फ चुनिंदा ट्रेनों का स्टॉपेज होता है और यहां से यात्रियों को बैठने उतरने के साथ ही माल लोड करने की व्यवस्था होती है। स्टेशन अमूमन छोटे होते हैं और यहां प्लेटफॉर्म की संख्याएं भी कम होती है। रेलवे द्वारा किसी रूट पर यात्रियों की अनुमानित संख्या को देखते हुए स्टेशन का निर्माण किया जाता है। भारत में करीब 7,000 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं।

दोस्तों, स्टेशन के बाद आता है रेलवे जंक्शन। ऐसा स्टेशन जहां से ट्रेनें कम से कम 3 अलग अलग दिशाओं में जा सकती हैं, रेलवे जंक्शन कहलाता है। रेलवे जंक्शन से ट्रेनों के रूट बदलते हैं। स्टेशन से बाहर निकलने वाले ट्रैक कम से कम 3 अलग अलग शहरों या रूट्स की तरफ जाते हैं। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इटारसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, खंडवा जंक्शन जैसे कई प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं, जहां से अलग अलग दिशाओं की ओर ट्रेनों का आवागमन होता है। भारत में 300 से 350 रेलवे जंक्शन हैं। मथुरा रेलवे जंक्शन सबसे बड़ा जंक्शन है। यहां से 7 रूट निकलते हैं।

दोस्तों जंक्शन के बाद आते हैं सेंट्रल या सेंट्रल स्टेशन। सेंट्रल स्टेशन किसी बड़े शहर का सबसे प्रमुख, सबसे पुराना और सबसे व्यस्त स्टेशन होता है। सेंट्रल स्टेशन किसी शहर के रेल नेटवर्क का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ यात्रियों की संख्या सबसे अधिक होती है और यह शहर के अन्य स्टेशनों से जुड़ा होता है। दोस्तों एक शहर में कई स्टेशन हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल सिर्फ एक ही होता है। मुंबई सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल भारत के कुछ प्रमुख सेंट्रल स्टेशन हैं।

दोस्तों सबसे आखिरी में आते हैं टर्मिनल या टर्मिनस। टर्मिनल रेलवे ट्रैक का अंतिम बिंदु होते हैं। जिन स्टेशन के आगे कोई रेलवे ट्रैक नहीं होता है वो टर्मिनल कहलाते हैं। टर्मिनल पर जिस ट्रेन जिस दिशा से आती है स्टेशन पर रुकने के बाद वापस उसी दिशा में लौटती है। यहाँ से ट्रेनों की यात्रा शुरू भी होती है और समाप्त भी। भारत में 50 से अधिक टर्मिनल है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, बांद्रा टर्मिनल पुराने टर्मिनल माने जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश का एकमात्र टर्मिनल रानी कमलापति टर्मिनल है जो भोपाल में है। दोस्तों इसके साथ ही भारतीय रेल तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेलवे को 18 जोन में विभाजित किया गया है। हर जोन का अपना हेडक्वार्टर होता है। मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे आदि जोन है। साथ ही आपने अप एंड डाउन ट्रेनें भी सुना होगा। दरअसल जब ट्रेन अपने उद्गम से मुख्यालय या किसी प्रमुख दिशा की ओर जाती है तो उसे अप डायरेक्शन माना जाता है। वहीं जब ट्रेन प्रमुख दिशा या मुख्यालय से वापस अपने मूल स्टेशन की ओर लौटती है तो उसे डाउन कहा जाता है। भारतीय रेलवे में अप डायरेक्शन की ट्रेनों को विषम जैसे कि 1, 3, 5 आदि संख्या वाले और डाउन दिशा की ट्रेनों को सम जैसे कि 2, 4, 6 संख्या वाले ट्रेन नंबर दिए जाते हैं।

0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है।

अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निवाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
4: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
3: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
4: क्यों?
3: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
4: वो कैसे?
3: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
4: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
3: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
4: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
3: आप कब आ रहे हैं?
4: आकाशवाणी खंडवा पर।
5: दोस्तों, हर रविवार युववाणी में प्रसारित किया जाता है आपकी फरमाइशी गीतों का क्रम
6: हेलो फ्रेंड्स,
5: जिसमें हम करते हैं आपसे आपके दिल की बातें और सुनवाते हैं आप ही के पसंद के फिल्मी गीत।
7: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना।
5: तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से कॉल कीजिए और सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीत। साथियों, हेलो फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग की जाती है।

0: हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच। आकाशवाणी खंडवा का टेलीफोन नंबर है 2226063 और खंडवा का STD कोड है 0733।
1: तो फोन करना ना भूलें। कार्यक्रम है हेलो फ्रेंड्स।
2: समाचार थोड़ी ही देर में।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान रायसेन से शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले। और भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में बादल छाए, तेज हवाओं के साथ कई जगह बारिश और मौसम हुआ सुहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रमासिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान एक महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
1: मेरे किसान भाइयों, आज धरती की हालत ये हो गई है कि लगातार हमने खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई डाल के ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बीमार होने लगी। एक सीमा होती है, लेकिन आज मैं आपसे ये कहने नहीं आया कि खाद नहीं डालना है। आज मैं ये कहने आया हूँ कि डालना तो है, लेकिन ये तो विचार कर लो कितना डालना है।
0: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और नौ निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। किसानों को मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जल संरक्षण तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की पहचान करना भी सिखाया जाएगा। अभियान के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूजीसी लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में आज उन्होंने बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों से सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को आज समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
2: हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में, अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक

0: संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए, मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी।
1: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिस पर आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। न्यायाधीश विवेक रुसिया मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के प्रमोशन के बाद उन्हें स्थान मिला है। सचदेवा को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। जस्टिस विवेक रुसिया जबलपुर के रहने वाले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प, उद्यमशील देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार गौ संरक्षण, गौशालाओं के निर्माण और डेयरी क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हर दिन 6,50,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 8वें दिन आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना हुआ है। राजधानी भोपाल में भी ढलती शाम में अचानक बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक घुल गई। भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर समेत कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। तापमान में तेजी से गिरावट आई। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिले में भी तेज आंधी के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। आगरमालवा जिले में आज दोपहर तेज धूल भरी आंधी तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। पन्ना में कल अचानक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना में आंधी और गरज चमक के साथ ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। आपको समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पन्ना में आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशे से दूर रहने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। झाबुआ के रामा में कल विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शहर के 4 नलकूपों का जनसामान्य को जल आपूर्ति के लिए 10 दिन के लिए अधिग्रहण किया है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नवाचार के तहत कलेक्टर कार्यालय में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अशोकनगर में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 15 जून तक किए जा सकते हैं। राजगढ़ जिले में रेशम कृमि पालन के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। इच्छुक कृषक आवेदन कर सकते हैं। मंदसौर कलेक्टर आदिति गर्ग ने संबल योजना के लंबित मामलों को जल्द निपटाने और जर्जर स्कूल भवनों को ठीक करने के निर्देश दिए। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में 3 जून को जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है।
7: एक महत्वाकांक्षी बीवी।
8: हम लोग टैक्सी में जाते हैं और टैक्सी में आते ही, और जब तक बालकनी में बैठकर पिक्चर ना देखो तो पिक्चर का क्या मजा।
7: एक प्यार में हर हद तक गुजर जाने वाली प्रेमिका।
9: अगर आप राज को मुझसे शादी करने के लिए मना ले तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी।
10: कितना?
9: अच्छा तो 2 करोड़।
7: और इन दोनों के बीच में फंसा एक लाचार ईमानदार पति।
11: अगर बेईमानी करके घूस लेके लाखों करोड़ों रुपए कमाता तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता, जबकि इस बेईमानी में सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है, सिर्फ मैं बिका हूं।
7: हम सुनाएंगे जुदाई फिल्म की कहानी और गीत खास आपकी फरमाइश पर। इस बुधवार सुबह 7:20 पर जरूर सुनिएगा एक ही फिल्म से कार्यक्रम।
6: लीजिए अब प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन का आपकी बहन तरुणा शुक्ला की राम राम। भाई बहन हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान रासायनिक उर्वरक न को उपयोग न का कम करने का उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आज 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरा देश में खेत बचाओ अभियान शुरू करी रहे। इन अभियान को शुभारंभ आज 1 जून 2026 का मध्य प्रदेश का रायसेन जिला का रागसिया गांव से माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का द्वारा करो गयो। इन अभियान का अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का लगभग 16,000 वैज्ञानिक, मंत्रालय का अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र का अधिकारी, न राज्य सरकार न का अधिकारी, देश भर का किसान न का खेत न ग्राम पंचायत न को दौरो करेगा। वो संतुलित उर्वरक न का उपयोग, मृदा परीक्षण न सतत कृषि पद्धति न का बढ़ावो अभियान का दौरान दलहन मिशन, तिलहन मिशन, न कपास मिशन, न किसान न से संबंधित सरकारी योजना न की जानकारी दी जाएगा। भाई बहनों, खेती हमारा जीवन को आधार छे, लेकिन आज खेती में बहुत सी चुनौती न को सामना करना पड़ी रही। मिट्टी में उर्वरता की कमी, भूमिगत जल स्तर को नीचे जानू, मृदा को कटाव, जलवायु परिवर्तन, रासायनिक उर्वरक न को बहुत अधिक उपयोग, ये सब समस्या न कृषि का प्रभावित करी रही। समय रहता हमका इन्हीं समस्या न को समाधान करनो बहुत जरूरी छे। यदि अव भी हमने ध्यान नहीं दियो तो भविष्य में अरु ज़्यादा कठिनाई हो जाएगा। खेती बचाओ अभियान केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि हमारी खेती ये भूमि, पर्यावरण न आने वाली पीढ़ी न का भविष्य का सुरक्षित रखना को एक संकल्प छे। तो हमका भी अपनी कृषि भूमि का उपजाऊ बनाए रखना में, प्राकृतिक संसाधन न की रक्षा करना में, न खेती का बचावना को हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्योंकि खेती बचेगा तो किसान समृद्ध होएगा, न किसान समृद्ध होएगा तो देश प्रगति करेगा। तो भाई बहनों, अधिक से अधिक सहयोग हमका खेती का बचावना में करना चाहिए। अब आपका आज को हम प्रश्न बता दे। तो आज को

प्रश्न छे, गाय की देशी नस्ल ना कौन कौन सी छे? गाय की देशी नस्ल ना कौन कौन छे, कौन कौन सी छे? इन प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह हम बतावांगा कार्यक्रम का अंत में। भाई बहनों, आज विश्व दुग्ध दिवस छे। हर साल 1 जून का विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाए। इन दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य दूध का पोषण को महत्व न डेयरी क्षेत्र का आर्थिक योगदान का प्रति लोग नक जागरूक करनो छे। भारत विश्व को सबसे बड़ो दुग्ध उत्पादक देश छे। इतनी बड़ी या उपलब्धि हमका हमारा किसान भाई न पशुपालक भाई न का महत्वपूर्ण योगदान से मिले। खेती का साथ साथ पशुपालन करी न दुग्ध उत्पादन को व्यवसाय किसान नकालीन आय को एक स्थायी न अच्छो स्रोत छे। फसल उत्पादन मौसम न बाजार की मांग पर निर्भर करे, लेकिन दूध एक असो उत्पाद छे जिका से किसान भाई न का प्रतिदिन नियमित आय मिले। इनाज कारण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था डेयरी व्यवसाय पर टिकेल छे। एकालीन किसान भाई न का उन्नत नस्ल का पशु न का पालनू, पशु न का स्वास्थ्य को नियमित ध्यान रखनू, समय पर टीकाकरण करवानू न संतुलित पौष्टिक आहार उपलब्ध करानू बहुत जरूरी छे। हरो चारो भूसो खली न खनिज मिश्रण को उचित उपयोग करने से पशु न को दुग्ध उत्पादन बढ़े। सरकार डेयरी सहकारी समिति न का माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा न विपणन सुविधा भी उपलब्ध करा रही रही। किसान भाई इन योजना को लाभ लेने न अपना डेयरी व्यवसाय का अधिक लाभकारी बनाई सको। इसका अलावा गोबर गौमूत्र को उपयोग जैविक खेती वर्मी कंपोस्ट न बायोगैस बनाने में करी न आप अतिरिक्त आय भी ले सको। भाई बंडोन, विश्व दुग्ध दिवस हमको यो संदेश दे कि खेती न पशुपालन एक दूसरा का पूरक छे। यदि किसान भाई फसल उत्पादन का साथ डेयरी व्यवसाय का भी अपनावे तो उनकी आय में बढ़ोतरी होगी न ग्रामीण क्षेत्र न को आर्थिक विकास भी तेजी से होगा। तो आओ आज विश्व दुग्ध दिवस पर हम संकल्प लेवा कि पशुपालन का अपना ही न दुग्ध उत्पादन का बढ़ावांगा, पशु न की अच्छी तरह देखभाल करांगा, न एक आत्मनिर्भर न समृद्ध किसान बनने को प्रयास करांगा। भाई बहनों, आओ सुनी लेवान एक निमाड़ी लोकगीत। किसान भाई।

0: भाई बहन, अभी अपने ताराचंद यादव न साथीना को गायल यूनी मारी लोकगीत सुनियो। आओ सुना भेंट वार्ता, जेको विषय छे कपास की उन्नत किस्में और आवश्यक सावधानियाँ। इन विषय पर जानकारी दे राज वैज्ञानिक श्री के सी जैन न इनका से बातचीत करी स्मिता बरोले न। तो भाई बहन आओ सुना पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, कपास की उन्नत किस्में और आवश्यक सावधानियां।
1: किसान भाई और बहनों, हमारे निमाड़ अंचल में खरीफ में वैसे तो कई फसलें हमारे किसान भाई खेतों में लगाते हैं, और खरीफ की फसलों की बात करें तो इसमें कपास की फसल मुख्य है। और भाई बहनों, कपास की फसल बोने में उन्नत किस्में कौन कौन सी होना चाहिए और फसल बोते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसी विषय में बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है केसी जैन साहब को। जैन साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: किसान भाइयों नमस्कार।
1: जैन साहब, जैसे कि हमारा विषय है कि कपास की उन्नत किस्में कौन कौन सी होनी चाहिए और फसल बोते समय हमारे किसान भाइयों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो आप हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताएं कि उन्नत किस्में कौन कौन सी होनी चाहिए।
2: जी हाँ, पहले किसान देसी जातियां लगाता था और कुछ संकर जातियां लगाता था
1: जी,
2: लेकिन सन 2002 में जेनेटिकली मॉडिफाइड या बीटी कपास जो आया, तो उसके बाद अल्प समय में ही किसानों ने उसे बहुत ज्यादा अपना लिया
1: जी।
2: आज हमारे क्षेत्र में करीब 90% क्षेत्र में बीटी कपास लगाया जाता है
1: जी।
2: इसके अलावा कुछ संकर जातियां जैसे H8 है, DCH32 है, HH6 है, इसके अलावा कुछ देसी जातियां हैं जैसे जवाहर कपास 4 है, जवाहर कपास 5 है, जवाहर ताप्ती है, खंडवा 2 है, ये जातियां किसान लगाता है और इनसे अच्छा उत्पादन लेता है।
1: आपने ये जो बात कही है तो उन्नत किस्मों की हो गई, अब ये बताइए कि सावधानियां कैसे रख सकते हैं हमारे किसान भाई बोते समय।
2: सावधानियां रखने में सबसे पहले हर तीसरे साल मिट्टी को पलट देना चाहिए, दूसरा फसल चक्र अपनाना चाहिए
1: जी,
2: हर साल एक ही खेत में किसान कपास की खेती नहीं करे, इससे ये फायदा होगा कि जो कीड़े के प्यूपे हैं वो जमीन के अंदर दब जाएंगे, इसके अलावा जो खरपतवार के बीज हैं वो अंदर चले जाएंगे, तो बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है। बीटी कपास का तो उपचारित आता है, पर जो देसी जातियां लगाते हैं उसका बीज उपचार करके लगाएं
1: जी। जैन साहब, जैसे कि हमारे कुछ किसान भाई सूखे में बोनी करते हैं कपास की, तो उसमें हमारे किसान भाई कौन कौन सी किस्में लगा सकते हैं या किस किस बातों की सावधानियां रखना
2: चाहिए? हाँ, सूखे में जो कपास लगाते हैं उनके पास पहली तो ये सुनिश्चित हो कि पानी की व्यवस्था हो
1: जी,
2: क्योंकि बिना

0: के सूखे में कपास की खेती नहीं की जा सकती है।
1: जी
0: दूसरा, 15 मई के आसपास
1: जी
0: हमारे यहाँ निमाड़ में कपास बोनी करते हैं, तो चौफुली बना के और उसमें चौफुली से बीज को बोनी करें और उसके बाद सिंचाई करें, और हर 10-15 दिन में सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था रखें।
1: जैन साहब, ये तो सूखे में जो हमारे किसान भाई बोनी करना
0: जी
1: चाहते हैं उसकी बात हो गई, पर जो किसान भाई बरसात आधारित अगर किस्में लगाना चाहते हैं तो
0: हाँ,
1: उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
0: बरसात में भी जो बोनी करते हैं वो पानी आने के पहले किसान लोग चौफुली बना के उसमें बीज लगा देते हैं,
1: जी
0: और जैसे ही पानी गिरता है तो उसके बाद उनका पर्याप्त अंकुरण हो जाता है।
1: जी
0: तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या दूसरा, पानी जब गिर जाए उसके बाद नम जमीन में चौफुली काट के और उसमें भी बीज की बोनी कर सकते हैं। पर हिल मतलब एक स्थान पे 2 बीज डालना चाहिए।
1: जी उससे क्या फायदा रहता है?
0: यदि एक बीज का अंकुरण नहीं हुआ तो एक जगह पे मिल ही जाएगा,
1: जी
0: और 2 भी रहे तो भी कोई अंतर नहीं आएगा उत्पादन में।
1: जी बोनी से पहले हमारे किसान भाइयों को भूमि किस प्रकार किसके लिए उपयुक्त होती है
0: हाँ,
1: उसके बारे में बताएं।
0: कपास की खेती के लिए मध्यम से भारी जमीन
1: जी
0: अच्छी है। कपास की काली मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो मध्यम से भारी जमीन उपयुक्त रहती है। लेकिन यदि हल्की जमीन है तो उसमें कपास की खेती करना उपयुक्त नहीं है।
1: जी
0: बलुई दोमट से गहरी काली मिट्टी,
1: जी
0: मध्यम प्रकार की मिट्टी, इसमें कपास की खेती अच्छी तरह से होती है, जिसमें पर्याप्त जीवांश हो,
1: जी
0: जो खाद है गोबर का खाद अच्छी तरह से डला हुआ हो, और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण है कि पानी का निकास अच्छा हो,
1: जी
0: जल भराव वाली जमीन ना हो।
1: जी जैसे आपने बताया कि मतलब ये बलुई दोमट मिट्टी होना चाहिए, तो इसके पहले हमारे किसान भाई कैसे तैयारी करें अपने खेत की बोनी से पहले, उसके बारे में बताइए।
0: हाँ, हर तीसरे साल पलटीप्लाउ करवाना है, मिट्टी
1: जी
0: पलटने वाले हल से प्लॉइंग करना है। इससे कई फायदे हैं, अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं।
1: जी
0: उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर चला के मिट्टी को अच्छी बना लें और
1: जी
0: फिर चौफुली बना के उसमें बीज की बोनी करें।
1: जी जैन साहब, जैसे आपने उन्नत किस्मों के बारे में बताया था, तो आपने बीटी कपास के बारे में भी अभी बातचीत चली थी
0: जी,
1: अपनी, तो इसकी क्या मुख्य विशेषता है बीटी कपास की, उसके बारे में बताएं।
0: बीटी कपास में जो सुंडियां हैं
1: जी
0: पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली, उनका आक्रमण नहीं होता है। जैसे चितकबरी इल्ली है,
1: जी
0: गुलाबी इल्ली है, अमेरिकन डेंडू छेदक इल्ली है
1: जी
0: और तंबाकू की इल्ली है, इनसे नुकसान फसल को नहीं होता है।
1: ये तो बीटी कपास की विशेषताओं के बारे में बताया, और इसे लगाने से हमारे किसान भाइयों को क्या फायदा है और कितना उत्पादन प्राप्त हो सकता है उसके बारे में बताइए।
0: बीटी कपास से अधिकतम उत्पादन मिलता है, लेकिन उसकी किसान को खेती भी उसी तरीके से करना रहती है।
1: जी
0: उसमें पर्याप्त जीवांश हो खेत में, खाद की अच्छी व्यवस्था रखे, जितनी अनुशंसा के अनुसार उसमें खाद दें
1: जी
0: और पानी समय पे दें, इस
1: जी
0: प्रकार से वो अधिक उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी जैसे बोनी की हम बात करते हैं, तो जो किसान भाई बरसात आधारित कपास लगाते हैं उनको कितनी बारिश की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बताइए।
0: हमारे निमाड़ में जैसे कि देखा अपन ने, 600 से 800 मिलीमीटर वर्षा होती है,
1: जी
0: उसमें किसान कपास की खेती करता है। यहीं देखें तो मालवा में 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा होती है, उसमें भी किसान कपास की खेती करते हैं।
1: जी
0: मतलब 600 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है।
1: जी जैन साहब, जैसा कि खंडवा कपास अनुसंधान केंद्र है और ये भी उन्नत किस्में विकसित करने में अग्रणी
0: हाँ
1: रहा है,
0: जी,
1: तो हमारे किसान भाई कौन कौन सी किस्में लगा सकते हैं और वो किस्में कहाँ से प्राप्त करें, इसके बारे में बताएं।
0: कई जातियाँ खंडवा मुख्य कपास अनुसंधान से विकसित हैं, जैसे खंडवा 2 है, जवाहर कपास 4 है, जवाहर कपास 5 है,
1: जी
0: जवाहर ताप्ती है, इसके अलावा भी विक्रम और कई जातियाँ यहाँ पे बीज उत्पादन किया जाता है।
1: जी
0: तो जो देसी जातियां हैं उनका बीज मुख्य कपास अनुसंधान केंद्र से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। ये
1: जी
0: प्रजनक बीज होता है और इसका उपयोग हर साल बीटी की

0: या 3 फीट बाय 3 फीट पे लगाते हैं,
1: जी
0: तो उस तरह से लगाना चाहिए। इसमें एक मुख्य बात जो है, जो भी किसान भाई बीटी कपास लगाते हैं, वो रिफ्यूज़ा हर बीटी कपास के पैकेट के साथ 120 ग्राम नान बीटी उसी जाति का बीज आता है,
1: जी
0: तो उसकी 5 लाइन खेत के चारों ओर लगाना चाहिए।
1: जी
0: लेकिन किसान इसे लगाता नहीं है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि कपास की खेती सफलतापूर्वक करनी है तो रिफ्यूजा जरूर लगाना ही पड़ेगा।
1: उससे किसान भाइयों को क्या लाभ है?
0: उससे ये फायदा है कि जो इल्लियां कपास पे लगती है
1: जी
0: वो पहले रिफ्यूजा पे आएगी,
1: जी
0: तो वहां पे किसान उसको कीटनाशी का प्रयोग करके नियंत्रित कर पाएगा।
1: जी
0: यदि रिफ्यूजा नहीं लगा है तो ऐसी स्थिति में इल्लियों में रोग रोधी क्षमता विकसित हो जाएगी
1: जी
0: और आने वाले समय में वो बीटी में भी इल्लियां लगने लगेगी।
1: जी
0: तो इसलिए रिफ्यूजा लाइन जरूर लगाएं। इसकी जगह अरहर की भी लाइनें लगा सकते हैं,
1: जी
0: तो 5 लाइन अरहर की भी चारों तरफ लगा सकते हैं, तो इल्लियां उस पे आएगी, उसे नियंत्रित करके अपनी मुख्य फसल को अपन सुरक्षित रख पाएंगे।
1: जी जिससे आपने बताया कि अरहर की भी लाइनें उसमें लगा सकते
0: जी
1: हैं। इसके अलावा जब हमारे किसान भाई कपास बोते हैं तो उनको कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, इसके बारे में बताइए।
0: हाँ, कपास के बीच में अंतर्वर्ती फसल भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि इस लाइन के बीच में काफी दूरी रहती है, तो
1: मतलब
0: उसमें
1: कितनी दूरी हमारे किसान
0: हाँ
1: भाई रख सकते हैं?
0: 4 फीट पे जैसे किसान लगाता है या 5 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखता है,
1: जी
0: तो हर 4 लाइन के बाद अरहर की लाइन लगा सकते हैं,
1: जी
0: मक्का की लगा सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा कई किसान हर 2 लाइन के बीच में भी उड़द या मूंग की 2 लाइनें लगा के अतिरिक्त फायदा ले सकते हैं।
1: जी
0: तो हर 2 लाइन के बाद भी अंतर्वर्ती फसल उड़द या मूंग की लगा सकते हैं। उड़द मूंग 65-70 दिन में पक के बाहर आ जाती
1: जी
0: है, उसके बाद उसकी मुख्य फसल कपास रह जाती है।
1: जी अब ये बताइए कि खाद उर्वरक का
0: जी
1: प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: जैसे बीटी कपास है, खाद की मात्रा उसमें ज़्यादा लगती है, संकर कपास बीटी कपास में,
1: जी
0: तो उस पे 150 किलो नत्रजन, 100 किलो फास्फोरस
1: जी
0: और 80 किलो पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर लगती है।
1: जी
0: और जो किसान देसी जातियां लगाते हैं
1: जी
0: उसमें नत्रजन 100 किलो प्रति हेक्टेयर, 80 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश खाद की आवश्यकता होती है।
1: जी और जो किसान भाई हमारे सूखे में मतलब गर्मी में लगाते हैं तो
0: हाँ
1: उसके लिए भी यही उर्वरक और खाद दे सकते हैं या
0: जी
1: उसके
0: हाँ,
1: लिए कोई अलग प्रबंध?

0: या 3 फीट बाय 3 फीट पे लगाते हैं,
1: जी
0: तो उस तरह से लगाना चाहिए। इसमें एक मुख्य बात जो है, जो भी किसान भाई बीटी कपास लगाते हैं, वो रिफ्यूज़ा हर बीटी कपास के पैकेट के साथ 120 ग्राम नान बीटी उसी जाति का बीज आता है,
1: जी
0: तो उसकी 5 लाइन खेत के चारों ओर लगाना चाहिए।
1: जी
0: लेकिन किसान इसे लगाता नहीं है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि कपास की खेती सफलतापूर्वक करनी है तो रिफ्यूजा जरूर लगाना ही पड़ेगा।
1: उससे किसान भाइयों को क्या लाभ है?
0: उससे ये फायदा है कि जो इल्लियां कपास पे लगती है
1: जी
0: वो पहले रिफ्यूजा पे आएगी,
1: जी
0: तो वहां पे किसान उसको कीटनाशी का प्रयोग करके नियंत्रित कर पाएगा।
1: जी
0: यदि रिफ्यूजा नहीं लगा है तो ऐसी स्थिति में इल्लियों में रोग रोधी क्षमता विकसित हो जाएगी
1: जी
0: और आने वाले समय में वो बीटी में भी इल्लियां लगने लगेगी।
1: जी
0: तो इसलिए रिफ्यूजा लाइन जरूर लगाएं। इसकी जगह अरहर की भी लाइनें लगा सकते हैं,
1: जी
0: तो 5 लाइन अरहर की भी चारों तरफ लगा सकते हैं, तो इल्लियां उस पे आएगी, उसे नियंत्रित करके अपनी मुख्य फसल को अपन सुरक्षित रख पाएंगे।
1: जी जिससे आपने बताया कि अरहर की भी लाइनें उसमें लगा सकते
0: जी
1: हैं। इसके अलावा जब हमारे किसान भाई कपास बोते हैं तो उनको कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, इसके बारे में बताइए।
0: हाँ, कपास के बीच में अंतर्वर्ती फसल भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि इस लाइन के बीच में काफी दूरी रहती है, तो
1: मतलब
0: उसमें
1: कितनी दूरी हमारे किसान
0: हाँ
1: भाई रख सकते हैं?
0: 4 फीट पे जैसे किसान लगाता है या 5 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखता है,
1: जी
0: तो हर 4 लाइन के बाद अरहर की लाइन लगा सकते हैं,
1: जी
0: मक्का की लगा सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा कई किसान हर 2 लाइन के बीच में भी उड़द या मूंग की 2 लाइनें लगा के अतिरिक्त फायदा ले सकते हैं।
1: जी
0: तो हर 2 लाइन के बाद भी अंतर्वर्ती फसल उड़द या मूंग की लगा सकते हैं। उड़द मूंग 65-70 दिन में पक के बाहर आ जाती
1: जी
0: है, उसके बाद उसकी मुख्य फसल कपास रह जाती है।
1: जी अब ये बताइए कि खाद उर्वरक का
0: जी
1: प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: जैसे बीटी कपास है, खाद की मात्रा उसमें ज़्यादा लगती है, संकर कपास बीटी कपास में,
1: जी
0: तो उस पे 150 किलो नत्रजन, 100 किलो फास्फोरस
1: जी
0: और 80 किलो पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर लगती है।
1: जी
0: और जो किसान देसी जातियां लगाते हैं
1: जी
0: उसमें नत्रजन 100 किलो प्रति हेक्टेयर, 80 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश खाद की आवश्यकता होती है।
1: जी और जो किसान भाई हमारे सूखे में मतलब गर्मी में लगाते हैं तो
0: हाँ
1: उसके लिए भी यही उर्वरक और खाद दे सकते हैं या
0: जी,
1: उसके लिए कोई अलग प्रबंध?
0: कि दूसरी फसल की बोनी हो जाती है
1: जी
0: जिससे 2 फसलें अच्छी तरह से आ जाती है।
1: जी जैन साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी और निश्चित ही हमारे किसान भाई आपके द्वारा दी हुई जानकारियों से जरूर लाभ लेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: जी धन्यवाद, नमस्कार।
2: भाई बहन हो, अभी अपन सुनी रहा था पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, जेको विषय थो कपास की उन्नत किस्में और आवश्यक सावधानियां, इन विषय पर जानकारी दे रहा था वैज्ञानिक श्री केसी जैन ने। इनका सी बातचीत करी रही थी बहन स्मिता बरोले। भाई बहन आओ सुना धर्मेंद्र सरमंडल ने साथी ने को गायल युनिमाड़ी लोकगीत।

भाई बहन, अभी अपन सुनी रहा था धर्मेंद्र शर्मा ढल न साथी न को गायल निमाड़ी लोकगीत। अब बारी छे आज का समाचार के। खंडवा ने बुरहानपुर का मध्यम भारत का प्रमुख केला उत्पादक केंद्र छे। यहाँ से प्रतिदिन भारी मात्रा में केला निकले। भारत माल परियोजना के तहत NH 753L का बोरगांव शाहपुर खंड का आधुनिक 4 लेन को बनाया जा रहा है, जेका से महाराष्ट्र न मध्य प्रदेश का बीच आवागमन तेज होएगा, न किसान न की उपज खराब होने से बची जाएगा। जिला प्रशासन का द्वारा किसान न का उन्नत खेती की तकनीक सिखाना न योजना न की जानकारी देने का लिए कृषक जागरूकता रथ चलाए जा रहे। ये था आज का समाचार न अव मौसम की जानकारी। आज सूर्योदय सुबह 5:41 पर न सूर्यास्त शाम 7:03 पर हुयो। आज का दिन की कुल अवधि लगभग 13 घंटा 22 मिनट की रहेगा। भाई बहन, आज को

अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रविवार रात को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज खंडवा जिला का कुछ क्षेत्र नमा बारिश भी हुई और अभी हल्की बारिश की संभावना भी है। भाई बहन अव कृषि उपज मंडी खंडवा से मिली जानकारी के अनुसार मंडी में उपज का भाव इस प्रकार रहा। सोयाबीन को न्यूनतम भाव रहो 3,227 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 7,599 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2,470 रुपये प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव रहो 5,000 रुपये प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव 7,560 रुपये प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव 5,100 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5,958 रुपये प्रति क्विंटल। डालर चना को न्यूनतम भाव 6,300 रुपये प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव 7,300 रुपये प्रति क्विंटल। ज्वार को न्यून भाव एकज रहो 2,150 रुपये प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव 5,200 रुपये प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव 7,450 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव 1,735 रुपये प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहो 1,966 रुपये प्रति क्विंटल। ये थी मंडी भाव मौसम की जानकारी। भाई बहनों प्रश्न का उत्तर का पहला आओ सुनी रेवा साधना उपाध्याय को गायल युनिमाड़ी लोकगीत।

भाई बहनों, साधना उपाध्याय को गायल निमाड़ी लोकगीत का बार बारी से आज पूछा गया प्रश्न का उत्तर की कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछे तो कि गाय की देसी नस्ल न कौन कौन सी छे। तो गाय की देसी नस्ल न छे निमाड़ी, मालवी, गिर न साहिवाल। भाई बहनों, इना प्रश्न का उत्तर का साथ आज अपनी बहन तरुणा शुक्ला का आज्ञा देव। राम राम।

0: हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से, तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है। चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस, गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था।
1: जी
0: और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती
1: जी
0: है, क्योंकि
1: जी जी
0: उसके पास अब वक्त है, घर
1: जी
0: में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इंप्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद, पता नहीं, इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डिफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे कि
1: जी
2: पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के आप डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया। और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारी हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जैसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक सॉर्ट ऑफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: एब्सोल्युटली शुभमा, अदिति, टॉकिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट्स, ऑफ कोर्स शुभमा ऑल्सो मेंशन अबाउट यू नो द हेल्थ एस्पेक्ट। नाउ हेल्थ इज वन थिंग विच जस्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, दैट इज वन, एंड ऑफ कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। इफ यू लुक एट द वेस्टर्न कंट्रीज, द मोर एडवांस्ड इकोनॉमीज, दे हैव देयर ओन सेफ्टी नेट्स, दे हैव देयर ओन सोशल वेल हेल्थ केयर स्कीम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन इंडिया, इफ यू टॉक ऑफ यू नो मे बी लेट्स से 10, 12 ईयर्स और 15 ईयर्स बैक or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades, in fact, that they could offer something like that to the common man, especially the poor or maybe the lower middle income group, that kind of. Now, with the Ayushman Bharat scheme coming in, you know, it again revolutionized, you know, the kind of safety net which was so very much required for the common man. Now, this, in fact, has turned out to be the world's largest government-funded health insurance.

0: or a large number percentage of them, because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, capacity, I mean, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success, that it is being envisaged.
1: Yes. Right, Shubham. Diti, abhi Shubham ne self-employment ki baat ki, stand-up India scheme bhi ek aisi scheme hai, jiske tahat 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं, इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। और पीएम स्वनिधि योजना, जो कि एक एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था COVID-19 के दौरान। जून 2020 में ये शुरू की गई थी। उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे।
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि COVID-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं। तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम, और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है, और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है। और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को। पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है। और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम। तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है। 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के।
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक, लखपति दीदी अभियान। ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में।
2: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है।
1: जी,
2: जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा। इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली पावर नहीं करते, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाए, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान

0: किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इंपॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी।
1: जी,
0: अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक।
1: जी,
0: वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा एंड अदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।
3: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at AIRNSDtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

0: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। ये आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण।
2: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
1: तो फिर सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन।

ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल पूर्ण होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में विशेष श्रृंखला की पहली कड़ी। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: साथियों, आज साजिद वाजिद इस संगीतकार जोड़ी के वाजिद खान की पुण्यतिथि है। इस दिन पर हम उन्हें याद करते हैं। उन्होंने कई गीत बॉलीवुड सिनेमा को दिए हैं और उन्हीं में से एक गीत जो कि काफ़ी प्रचलित भी है, आइए आपको सुनवाते हैं। दबंग 2 फिल्म का एक गीत है, इसे गाया है वाजिद, ममता शर्मा और श्रेया घोषाल ने। जलीस शेरवानी ने इसे लिखा है और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।
1: Ready? 1, 2, 1, 2, 3.

2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।

0: बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: और चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए विविध भारती से सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल की आवाजें। शब्बीर अहमद के बोल, धुन बनाई साजिद वाजिद ने और फिल्म का नाम पार्टनर।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा और

0: औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य

0: प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।

0: कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 3

0: 58 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-1481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आए 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 9 बज रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के गाए इस गीत के साथ। फिल्म है मुगले आजम और इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने।

लीजिए सुनिए आराधना फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी की शब्द रचना और सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वो अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू

0: मेरे मंदा।
1: जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

मिश्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

दोबारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आईं उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ

आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में यह फिल्म अभिनय के अलावा

दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी

0: दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहां हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गई। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: अब तो

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा हो गई।

0: पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।
1: रुक सा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थीं अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

मेरी किस्मत की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच लो इस दिल का अब क्या करना है।

ये बहाने, इन बहानों के फसाने हमें कर रहे हैं बेकरार। कब बनेगी फूल ये कली, है बस इसी का इंतजार।

क्या भरोसा है कल का, जो करना है चलो आज ही करें। जो चाहते हैं कि रेशम सा हो रिश्ता हमारा, तो ये कोशिश आज ही करें।

जब से लगाया है दिल, इस दिल का तो बुरा हाल है। छोड़ जाओगे घर कभी तो क्या होगा, जी को सता रहा यही ख्याल है।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: तरंग।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।

0: कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said, Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said, both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said, Myanmar is